दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी द्वारा रचित कहानियों पर आधारित गीतों की श्रृंखला

दोस्तों, आज हम तुम्हें सुनाते हैं एक मजेदार कहानी। सुनोगे तो फिर बजाओ ताली। अरे भाई, अपने दोनों हाथों से ताली बजाओ। ताली तो दो हाथ से ही बजती है। ऐसे देखा, अब बजी ना ताली। शाबाश। हाँ भाई,

0: अब तुम्हें सुनाते हैं कहानी, भोलू की कहानी। एक था लड़का, नाम था भोलू। भोलू बकरियां चराने जंगल में जाता था। दोस्तों, एक बात थी, भोलू को मिठाई खाने का बहुत शौक था। इसलिए भोलू ये गीत अक्सर गाता रहता।
1: अगर कभी ऐसा हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, पेड़ों पर हो गरम जलेबी, लड्डू की बारिश हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, फूलों की जगह उगे मिठाई, रसगुल्ले या रस मलाई, पानी शरबत सा हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए।
0: अरे भाई, गीत गाकर भोलू ताली जरूर बजाता, ठीक वैसे ही जैसे तुमने अभी बजाई थी। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर जोर जोर से मारकर ताली बजाता। ऐसे। दोस्तों, जिस जंगल में भोलू बकरियां चराता, उसी जंगल में एक पुरानी गुफा थी। अच्छा भाई, गुफा जानते हो तुम? जंगल में पत्थरों को जोड़ जोड़ कर एक गोल गोल घर बना होता है, उसे गुफा कहते हैं। उस गुफा में तरह तरह की मिठाइयां थी। वहां रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, लड्डू और बर्फी तो भाई बहुत थी। क्यों, सुनकर ही आ गया मुंह में पानी। मगर गुफा का दरवाजा हमेशा बंद रहता। उस गुफा का दरवाजा खुल तो सकता था, लेकिन उसके लिए एक तरीका था। दरवाजे के सामने खड़े होकर तीन बार ताली बजानी पड़ती थी। कैसे? ऐसे। और फिर कहना पड़ता, खुल जा सिम सिम, और फिर गुफा का दरवाजा खुल जाता, और फिर पेट भरकर मिठाई खाकर बाहर भी निकला जा सकता था। तरीका बिल्कुल यही था, यानी पहले तीन बार बजानी पड़ती ताली, ऐसे, और फिर क्या कहना पड़ता? हाँ, फिर कहना पड़ता, खुल जा सिम सिम। है ना बिल्कुल आसान? जरा तुम भी करके देखो। हाँ हाँ, करो। शाबाश, पहले तीन बार बजानी पड़ती ताली। कैसे? एक, दो, तीन। हाँ भाई, अब कहो, कहो ना, खुल जा सिम सिम। हाँ तो दोस्तों, एक दिन की बात है, भोलू को उस गुफा के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, सुनते ही भोलू के मुंह में पानी आ गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस गुफा में मिठाइयां ही मिठाइयां थीं। जंगल में तो भोलू रोज जाता था, इसलिए उस गुफा तक पहुंचने में भोलू को कोई डर नहीं लगा। मगर रास्ते में अपना वही गीत गुनगुनाता रहा।
1: अगर कभी ऐसा हो जाए बड़ा मजा मुझको आ जाए, पेड़ों पर हो गरम जलेबी, लड्डू की बारिश हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, फूलों की जगह उगे मिठाई, रसगुल्ले या रस मलाई, पानी शरबत सा हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए।
2: तो यही है वो गुफा, इसी में है तरह तरह की मिठाइयाँ। अगर ये बात सच निकली तो बड़ा मजा आएगा। दरवाजा बंद है, इसे खोलने के लिए पहले 3 बार ताली बजाऊंगा, फिर कहूंगा खुल जा सेम सेम।
0: और भोलू ने वैसा ही किया, दरवाजा खुल गया। भोलू अंदर गया तो दरवाजा फिर बंद हो गया। अंदर पहुंचते ही भोलू ने चारों तरफ देखा।
2: क्या खुशबू है, वाह, मिठाइयां ही मिठाइयां। समझ में नहीं आता पहले कौन से उठाऊं। ये रसगुल्ले तो बाद में खाऊंगा, पहले ये जलेबी खा लूं। चाशनी से भरी हुई, भाई मजा आ गया।
0: भोलू दोनों हाथों से मिठाई उठा उठा कर खाने लगा। कभी एक हाथ से बर्फी उठाता तो दूसरे हाथ से खोए का पेड़ा। लड्डू उसे शायद बहुत अच्छे लगे, इसलिए उसने 2 लड्डू एक साथ अपने मुंह में डाल लिए। लड्डू उसके गले में फंस गए। और दोस्तों फिर शुरू हो गई खांसी। कई बार खाते खाते तुम्हें भी खांसी आती है ना? कैसी खांसी आती है जरा खांस कर देखो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही खांसी भोलू को आ रही थी।
2: पानी पानी, अरे यहाँ तो सिर्फ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं, पानी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ ढूंढू पानी, मिठाई तो भर पेट खा ली, अब बाहर निकला जाए। थोड़ी सी मिठाई तो साथ ले चलूं।
0: भोलू ने दोनों हाथों में मिठाई उठा ली, लेकिन दोस्तों दोनों हाथों में जब मिठाई होगी तो ताली कैसे बजेगी, नहीं ना? और जब ताली नहीं बजेगी तो क्या होगा, क्या होगा? हाँ, दरवाजा नहीं खुलेगा। भोलू के साथ भी यही हुआ। वो खांसते खांसते कहता जा रहा था,
2: खुल जा सिम सिम। अरे ये दरवाजा
1: दरवाजा क्यों नहीं खुलता? खुल जा सिम सिम। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम।
0: अब बेचारा भोलू क्या करे, वो रोने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से रोने लगा। उसकी दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे। दोस्तों, क्या तुम भोलू की तरह रोकर दिखा सकते हो? हाँ, ऐसे। इस तरह भोलू काफी देर तक रोता रहा, मगर दरवाजा नहीं खुला। दोस्तों, तुम्हें याद है ना, दरवाजा खोलने के लिए क्या करना पड़ता था? याद करो। हाँ हाँ, शाबाश। तीन बार दोनों हाथों से ताली बजाकर कहना पड़ता था। क्या कहना पड़ता था? खुल जा सिम सिम। मगर भोलू के दोनों हाथों में थी मिठाई, इसलिए वो ताली बजा ही नहीं सकता था।
1: पता नहीं दरवाजा कब खुलेगा, तब तक मुझे यूं ही बैठे रहना पड़ेगा। मिठाई उठाए उठाए तो मेरे हाथ भी थक गए हैं, इसे तो वापस रख दो।
0: ये कहकर भोलू ने अपने हाथ की मिठाई रख दी। मिठाई रखते ही उसके दोनों हाथ खाली हो गए, और अपने खाली हाथों को देख उसे फौरन वो बात याद आ गई।
2: अब याद आया, मैंने ताली नहीं बजाई। अब बजाता हूँ तीन बार ताली, और फिर कहूंगा खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम।
0: दोस्तों, भोलू के ऐसा करते ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही भोलू ने दौड़ लगाई और सीधे घर पहुंच गया।
3: खुल जा सिम सिम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, विशेष संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार नीरज शर्मा और यमन कौशिक, संगीत महेंद्र सरीन, ध्वनियांकन दीपक पांडे और राजेंद्र प्रसाद, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। अगर हर जोडियक साइन, हर राशि एक पेट होता। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा फनी, थोड़ा रिलेटेबल, और थोड़ा सा अरे ये तो मैं हूं वाला फील देने वाला। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हर जोडियक साइन एक पेट होता तो वो कैसा होता। सोचिए, अगर एरीज, टॉरस, जेमिनी ये सब इंसान नहीं पेट्स होते तो उनका एटीट्यूड, उनकी आदतें कितनी इंटरेस्टिंग होती। तो चलिए एक इमेजिनरी पेट वर्ल्ड में चलते हैं। सबसे पहली राशि एरीज, द हाइपर पपी। एरीज एक छोटा सा पपी है, इतनी एनर्जी कि आप थक जाओ पर वो कभी नहीं। सुबह 6 बजे ही उठो उठो उठो खेलते हैं, अगर बॉल फेंक दो तो वो बॉल लेके वापस आएगा, लेकिन कभी कभी खुद ही भूल जाएगा कि बॉल कहाँ है। एरीज पेट का रूल सिंपल है, एक्शन पहले सोच बाद में। टॉरस, रॉयल कैट। टॉरस एक क्लासी कैट है जिसे कंफर्ट सबसे ज्यादा पसंद है, सॉफ्ट कुशन, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट एस्थेटिक्स, और खाना टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। अगर मूड नहीं है तो आप बुलाते रहो, वो सिर्फ आपको देखेगा और इग्नोर करेगा विद एटीट्यूड। जेमिनी, द टॉकिंग पैरट, बोलता तोता। जेमिनी एक तोता है जो सिर्फ बोलता नहीं, नॉन स्टॉप बोलता है। आप कुछ भी बोलो वो उसका रिप्लाई देगा, और फिर उसका भी रिप्लाई देगा, और कभी कभी खुद से ही बात करता रहेगा। कैंसर, इमोशनल टर्टल। कैंसर एक प्यारा सा टर्टल है, थोड़ा स्लो लेकिन बहुत इमोशनल। अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर कर दो तो अपने शेल में चला जाएगा, लेकिन प्यार मिले तो आपके पास ही चिपक के बैठ जाएगा। लियो, ड्रामा किंग लायन। लियो ऑब्वियसली लायन ही होगा। एंट्री ऐसी जैसे स्टेज पर आ रहा हो, अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, और अगर इग्नोर कर दिया तो ड्रामा गारंटीड है। वर्गो, परफेक्शनिस्ट रैबिट। वर्गो एक रैबिट है जो हर चीज परफेक्टली चाहता है, फूड भी अलाइन होना चाहिए, स्पेस क्लीन होना चाहिए, और अगर कुछ भी ऑफ हो गया तो वो खुद ही ठीक करेगा। लिब्रा, स्टाइलिश स्वान। लिब्रा एक स्वान है, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, और हमेशा बैलेंस में, लेकिन उनके डिसीजंस उसमें खैर टाइम लगता है। ये खाना या वो खाना, ये ड्रेस या वो ड्रेस, ये प्रोफेशन या वो प्रोफेशन, और वो बस सोचता ही रहेगा। स्कॉर्पियो, द मिस्टीरियस स्नेक। स्कॉर्पियो एक स्नेक है, इसमें कोई दोराहे नहीं है। साइलेंट, ऑब्जर्वेंट, थोड़ा ज्यादा इंटेंस, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों से इनकी पटती भी नहीं, लेकिन जिस पर ट्रस्ट हो जाए उसके लिए सब कुछ, जान भी हाजिर है। सैजिटेरियस, द फ्री हॉर्स। सैजिटेरियस एक हॉर्स है जो बंधन बिल्कुल पसंद नहीं करता,
खुला मैदान, फ्रीडम और एडवेंचर। अगर आप इसे बांधने की कोशिश करोगे तो ये सीधा भाग जाएगा। कैप्रिकॉर्न, द वाइज एलिफेंट। कैप्रिकॉर्न एक एलिफेंट है, स्ट्रॉन्ग, काम, इंटेलिजेंट और फोकस्ड। हर चीज प्लान करके करेगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अक्वेरियस, एक यूनिक डॉल्फिन। जी हाँ, अक्वेरियस एक डॉल्फिन है, डिफरेंट, इंटेलिजेंट और थोड़ी क्वर्की। कभी आपको समझ नहीं आएगा ये कर क्या रहे हैं, लेकिन वो खुद परफेक्टली क्लियर हैं अपने विजन में। और आखिरी राशि पाइसिस, द ड्रीमी फिश। पाइसिस एक फिश है जो अपनी ही दुनिया में रहती है, ड्रीमी, क्रिएटिव और हमेशा फुदकती हुई, और कभी कभी रियलिटी से थोड़ी डिस्कनेक्टेड, लेकिन दिल सबसे सॉफ्ट। दोस्तों, हर साइन अलग है, हर पेट अलग है और हर इंसान भी अलग होता है। किसी में एनर्जी ज्यादा है, किसी में इमोशन ज्यादा है, किसी में लॉजिक ज्यादा है और किसी में ड्रीम्स। ओ माय गॉड, अगर आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल मैं हूं, तो रिलैक्स, सबको लग रहा है। दुनिया इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि सब अलग है, और अगर सब सेम होते तो लाइफ कितनी बोरिंग होती, साइमीस ट्विंस जैसे। इसीलिए अपने अंदर के पेट को समझो और दूसरों के पेट को एक्सेप्ट करो। मैं हूं आपकी दोस्त। अगली कहानी तक जरूर बताइएगा आपका जोडियाक पेट कौन सा है और क्या वो आपसे मैच करता है। तब तक के लिए अपनी वाइफ को एंजॉय करिए और लाइफ को थोड़ा फन बनाइए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: बजट रोमांटिक्स। ये बंदा बोलता है मैं तुम्हें चांद तारे ला दूंगा, और डेट पे बोलता है स्प्लिट कर लेते हैं, इक्वालिटी भी तो इम्पोर्टेंट है।

हेनरीज कैफे, जहां चाय से ज्यादा कहानियां उबलती थीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी गर्म चाय जैसी। पहले सिप में सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसे महसूस करोगे, अंदर कहीं गहरा उतरती चली जाएगी। शहर और उसकी दौड़, ये कहानी है एक शहर की। बड़ा शहर, भीड़ भरा, रोशनियों से जगमग, और फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला। यहाँ लोग भागते बहुत हैं, पर रुकते कम हैं। मिलते बहुत हैं, पर समझते कम हैं। और इसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी गली थी, जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता था, और वहां था हेनरीज कैफे। ना कोई फैंसी लाइट्स, ना लाउड म्यूजिक, बस एक पुराना सा वुडन बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था हेनरीज कैफे, और उसके नीचे छोटी सी लाइन थी, यहां चाय के साथ थोड़ा सा सुकून फ्री है। आप सोचोगे ऐसा क्या खास है इस जगह में? खास ये है कि यहां लोग चाय पीने नहीं, अपने आप से मिलने आते थे। हेनरी, वो कौन था? ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, ना उसका पास्ट, ना उसकी कहानी। बस इतना पता था कि वो हर इंसान को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की दौड़ से बाहर खड़ा हो, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो, और बस देख रहा हो, समझ रहा हो, बिना जजमेंट्स के। एक अजीब सी बात, हेनरी के कैफे में एक अजीब सी बात थी। यहां मेन्यू सिंपल था, चाय, कॉफी, थोड़ा सा खाना, लेकिन हर ऑर्डर के साथ एक सवाल फ्री मिलता था। जी हाँ, एक सवाल, और वो सवाल कभी सिंपल होता था, कभी गहरा। कभी वो सिर्फ इतना ही पूछता था, तुम ठीक हो? और लोग हंसते हुए कहते, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन हेनरी के सवाल में कुछ ऐसा था कि लोग थोड़ी देर बाद रुक जाते थे और फिर धीरे से कहते थे, शायद नहीं। रोज शाम को तीन लोग वहां जरूर आते थे, जैसे तीन अलग कहानियां एक ही किताब के अलग पेजेस हों। राघव, कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ परफेक्ट दिखने वाली लाइफ, लेकिन आंखों में थकान और एक अजीब सा खालीपन। वो रोज आता, चाय मंगाता और बस एक ही लाइन बोलता, यार समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। दूसरी मीरा, एक आर्टिस्ट, स्केचबुक हमेशा साथ होती थी, पर पेजेस अक्सर खाली रहते थे। उसके हाथ में टैलेंट था, लेकिन दिल में डर, डर कि लोग क्या कहेंगे। और तीसरी शांति अम्मा, एक बूढ़ी माँ जो रोज आती थी, एक ही कुर्सी पर बैठती थी और दूर देखते हुए चाय पीती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जो शायद कभी आने वाला ही नहीं था। एक शाम जो अलग थी, उस दिन बारिश हो रही थी, शहर धीमा पड़ गया था और कैफे में सिर्फ तीन लोग थे। हेनरी ने चाय सर्व की और इस बार उसने एक अलग सवाल पूछा, अगर कल सब खत्म हो जाए। जी हाँ, अगर कल सब खत्म हो जाए तो आज क्या करोगे? सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। सच सामने आता है। राघव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं जॉब छोड़ देता, मैं वो करता जो मैं सच में करना चाहता हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखा देती, चाहे लोग हंसें या समझें, मैं दिखाती। और शांति अम्मा ने बहुत धीरे से कहा, मैं उसे माफ कर देती, अपने बेटे को,
हेनरी ने उन्हें देखा और बस इतना कहा, तो कल का वेट क्यों? अगले कुछ दिनों में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। राघव ने सच में रेजिग्नेशन दे दिया, डर के साथ लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। मीरा ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन प्लान की और पहली बार उसने अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखाई। शांति अम्मा ने फोन उठाया, नंबर डायल किया और बस इतना कहा, बेटा घर आ जाओ। एक दिन तीनों कैफे आए लेकिन दरवाजा बंद था, बोर्ड हटा हुआ था और अंदर कोई नहीं था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। एक छोटा सा नोट दरवाजे पर, एक कागज चिपका हुआ था, जिंदगी रुकती नहीं, बस कभी कभी हम रुक जाते हैं, जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर है, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया था। With love, Henry। तीनों वहां खड़े रहते हैं चुप। राघव बोला, ये कौन था? मीरा बोली, शायद एक इंसान। शांति अम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं वो एक एहसास था। दोस्तों जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग आते हैं, बहुत देर के लिए नहीं लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर। वो आपको बदलने नहीं, बस आपको आपसे मिलवा देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आप किसी की लाइफ में हेनरी बन चुके हो। कभी एक सही वक्त पर बोला हुआ शब्द, कभी एक सही वक्त पर दिया हुआ साथ और कभी एक छोटी सी स्माइल किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। तो आज जब आप अपनी चाय पियेंगे या अपने रूटीन में बिजी होंगे, तो एक बार रुक कर खुद से जरूर पूछेगा, मैं सच में क्या चाहता हूं? और अगर जवाब मिले तो कल का वेट मत करना। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक दिलचस्प कहानी। आज का थॉट सिंपल है, कभी किसी के लिए हेनरी बन जाना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही सवाल पूछना ही काफी होता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हमेशा बिजी रहने वाले लोग, ये लोग इतने बिजी होते हैं कि फ्री होने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए। कल मिलते हैं, कल बिजी हूँ। पर तुम तो घर पे हो।
2: हाँ, घर पे बिजी हूँ।

वर्ड ऑफ द डे गैडजुकरी। दोस्तों, सुबह हो, शाम हो या रात के खामोश पल, अगर आपके साथ बातें हो जाएं, तो हर वक्त थोड़ा सा और खूबसूरत लगने लगता है। और आज की बात थोड़ी हटके है, थोड़ी पुरानी है, थोड़ी सी फिल्मी भी है। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है गैडजुकरी। सच बताऊं, पहली बार सुनोगे तो लगेगा जैसे किसी जादूगर का मंत्र हो, गैडजुकरी। चलिए इसको सीधी भाषा में समझते हैं। गैडजुकरी का मतलब होता है बहुत पुराने जमाने के शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्द जो आज हम रोज की जिंदगी में यूज नहीं करते, जैसे हे नाथ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, मेरा हृदय व्याकुल है। अब आप ही सोचो, अगर आज के व्हाट्सएप चैट में कोई लिख दे हे मित्र, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो तुरंत रिप्लाई आएगा, तू ठीक है ना, फीवर तो नहीं हो गया। आज हम लोग क्या बोलते हैं, और दोस्त क्या सीन है, सब चिल है, क्या कर रहा है। और अगर गैडजुकरी मोड ऑन हो तो यही मैसेजेस हो जाएंगे, आपका वर्तमान कार्यक्रम क्या है, आपका मन कैसा है। ये सुन के लगता है ना जैसे किसी ने मोबाइल हटा के सीधा इतिहास की किताब खोल दी हो। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी क्रश को इंप्रेस करेगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा रॉयल अंदाज में। वो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारी मुस्कान ने मेरे हृदय को छू लिया। लड़की ने देखा, 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, भाई तू ठीक है या किसी प्ले का रिहर्सल कर रहा है। गैडजुकरी एक अलग ही मैजिक होता है दोस्तों। जब आप कोई हिस्टोरिकल कहानी पढ़ते हो या कोई पुरानी फिल्म देखते हो, तो वो पुराने शब्द आपको उस दुनिया में ले जाते हैं, जैसे आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हो। एक सिंपल लाइन, मैं तुम्हें याद करता हूं, और एक पुराने अंदाज में, तुम्हारी यादों ने मेरे मन को घेरा हुआ है। अब बताओ, थोड़ा गहरा फील हुआ या नहीं। कभी कभी पुराने शब्द दिल के ज्यादा करीब होते हैं, जैसे प्यार बोलने से ज्यादा प्रेम बोलने में एक अलग ही सॉफ्टनेस है। दुख की बजाय व्यथा, खुशी की बजाय आनंद, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये अपने साथ एक पूरी फीलिंग लेकर आते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसका भी ओवरडोज डेंजरस है। सोचो, घर पे मम्मी बुला रही हैं, बेटा खाना खा लो, और आप जवाब दो, हे मातेश्री, मैं भोजन ग्रहण करने के लिए तत्पर हूं। मम्मी का जवाब, सीधा बोलना आ रहा हूं। ऑफिस या इंटर्नशिप में अगर गैडजुकरी चालू हो जाए तो बॉस बोले, फाइल कंप्लीट हुई, और आप बोले, हे प्रभु तुल्य अधिकारी, ये कार्य अभी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। बॉस बोले, कल से मत आना भाई। तो दोस्तों, बात सिंपल सी है, गैडजुकरी एक स्टाइल है, एक फ्लेवर है, एक अंदाज है, जो कहानियों को खूबसूरत बनाता है, बातों को गहरा बनाता है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिए, आज किसी एक दोस्त को थोड़ा गैडजुकरी स्टाइल में मैसेज जरूर कीजिएगा, जैसे हे मित्र, आपका दिन मंगलमय हो, और फिर उनका रिएक्शन देखिएगा। मुझे पक्का लगता है या तो वो कंफ्यूज होंगे, या फिर हंस पड़ेंगे, या फिर डायरेक्टली कॉल करेंगे आपको चेक करने के लिए, आपकी तबीयत चेक करने के लिए। चलिए एक और सीन, नॉर्मल, फोन क्यों नहीं उठाया, गैडजुकरी स्टाइल, हे प्रिय, तुमने मेरे आह्वान को क्यों अनसुना किया। रिप्लाई, फोन साइलेंट था यार। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम सिंपल शब्दों में ही सब कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा प्यार से बोलेंगे ना, तो वही बात एक याद बन जाती है, एक मोमेंट, एक मेमोरी शायद। और शायद यही है गैडजुकरी का असली मतलब।
शब्दों को थोड़ा और खूबसूरत बना देना और थोड़ा और महसूस करवा देना। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए शब्द, एक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपनी बातों में थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा जादू और थोड़ा सा स्टाइल जरूर रखिए।

0: ఏక పేరైనా, యా గోడా బోల్లా, యా చతుర బోల్లా, గా
1: ఏక చతుర నారక.

0: मेरे मन के द्वार
1: हंसत जा
0: हम हंसत जा
1: हम मनत जा

जोडियाक जंक्शन, जब 12 रास्ते एक ही मंजिल तक ले गए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी हटकर है। इसमें ना सिर्फ कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि उनकी सोच, उनकी आदतें और उनके डिसीजंस सब कुछ एकदम हटके हैं। सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर हो और हर इंसान अलग रास्ते से चल रहा हो, तो क्या होगा? अगर एक दिन सभी रास्ते एक ही जगह पर आ मिले। एक अजीब सी जगह थी, ना मैप पर मिलती थी ना गूगल पर। नाम था जोडियाक जंक्शन, एक पुराना सा रेलवे स्टेशन जहां से वो लोग आते थे जो लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड होते थे या फिर जो अपनी मंजिल ढूंढ रहे होते थे। उस रात वहां 12 लोग मिले, सब अलग, सब यूनिक और सब अपनी कहानी के साथ। अर्जुन हमेशा जल्दी में। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर आते ही बोला, ट्रेन कहाँ है, मुझे जल्दी है। उसे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके लिए लाइफ रेस थी, बिल्कुल एक एरीज की तरह। भावना कंफर्ट क्वीन। भावना ने पहले बेंच चेक की, ये कंफर्टेबल है भी या नहीं। उसके लिए सफर का मजा सुकून में था, बिल्कुल एक टॉरस की तरह। चिराग नॉन स्टॉप टॉकर। चिराग ने आते ही सबसे बात करना शुरू कर दी, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और बिना जवाब का वेट किए खुद ही बोलता रहा, बिल्कुल एक जेमिनाई की तरह। छवि दिल से जीने वाली। छवि थोड़ी इमोशनल थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर बोली, ये जगह थोड़ी अजीब सी फील दे रही है, नहीं? बिल्कुल एक कैंसर की तरह। लक्ष्य

अटेंशन मैग्नेट, लक्ष्य एंट्री ऐसे करता है जैसे हीरो हो किसी फिल्म का। गाइज रिलैक्स, मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल एक लियो की तरह। विरेन, परफेक्शन लवर। विरेन ने पहले ही 10 बार शेड्यूल देखा, फिर क्लॉक देखी और फिर बोला, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है, टाइमिंग सही है। बिल्कुल एक वर्गो की तरह। लीना, कंफ्यूज्ड बट चार्मिंग। लीना 2 टिकट्स हाथ में लिए खड़ी थी, ये वाली लूं या वो वाली, डिसीजन उसके लिए एक एडवेंचर था। बिल्कुल एक लीब्रा की तरह। समर, एक साइलेंट ऑब्जर्वर। समर चुप था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, सबको देख रहा था, जैसे सबकी कहानी समझ रहा हो। बिल्कुल एक स्कॉर्पियो की तरह। कबीर, एक फ्री सोल। कबीर ने बोला, यार कोई भी ट्रेन आ जाए मैं तो चढ़ जाऊंगा। उसके लिए मंजिल से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल एक सैजिटेरियस की तरह। देव, फोकस्ड। देव सीधा खड़ा था, मैं यहां एक रीजन से आया हूं, एक टारगेट से, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। बिल्कुल एक कैप्रिकॉर्न की तरह। अयान, एक अलग थिंकर। अयान ने अचानक बोला, गाइस क्या हो अगर ट्रेन ही इल्यूजन हो। सब उसे देखते रह गए। बिल्कुल एक अक्वेरियस की तरह। मेहर, ड्रीमिंग। मेहर आसमान देख रही थी। शायद हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं। बिल्कुल एक पाइसिस की सोच। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, ध्यान दीजिए, जोडियाक जंक्शन पर आने वाली ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सच्ची मंजिल जानते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या सच में उन्हें पता था कि वो कहां जा रहे हैं। अर्जुन रुक गया, पहली बार शायद मुझे नहीं पता। भावना बोली, मुझे सिर्फ कंफर्ट चाहिए था, मंजिल नहीं सोची। चिराग चुप हो गया, सच में पहली बार। हर किसी को रियलाइज हुआ कि वो बस चल रहे थे लेकिन पता नहीं था कि कहां जा रहे हैं। तब समर ने धीरे से कहा, शायद ट्रेन यहां आएगी ही नहीं। सब शॉक हो गए, क्या मतलब। समर बोला, शायद ये जगह ट्रेन के लिए नहीं है, ये जगह हमें रोकने के लिए है, ताकि हम सोच सकें, समझ सकें कि हम सच में क्या चाहते हैं। और उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया, जोडियाक जंक्शन एक स्टेशन नहीं था, एक पॉज था। कोई ट्रेन नहीं आई, लेकिन सब वहां से चल दिए अपनी अपनी डायरेक्शंस में, लेकिन इस बार एक क्लियर माइंड के साथ। अर्जुन धीरे चला, भावना ने कंफर्ट के साथ एक पर्पस भी चूज किया, चिराग ने सुनना सीखा और हर किसी ने अपनी मंजिल खुद डिसाइड की। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर कभी ना कभी खड़े जरूर होते हैं, जहां हम रुकते हैं, कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं, मैं जा कहां रहा हूं। और शायद वही पॉज जरूरी होता है, क्योंकि बिना रुके सही रास्ता कभी नहीं मिलता। मैं हूं आपकी दोस्त, और आज का सवाल बहुत सिंपल है, आप अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर हो या ऑलरेडी ट्रेन पकड़ चुके हो। सोचिए, और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ी प्रोग्रेस होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त न रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है, और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

0: तो दोस्तों प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और जानते हैं भारत में मूक और बोलती फिल्मों का रोचक इतिहास।
3: वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। March 14, 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी।
4: पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी।
5: शोबोट।
4: और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था,
6: हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी।
4: अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया।
7: खुदा के नाम पे प्यार।
4: इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है।
7: अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है घर लेने की। ले दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है घर देने।
3: आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर

0: आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी।
1: You see, as I told you, they are free.
2: Alma, you're safe. All of you.
3: Never fear, my little one. We were more than a match for those cutthroats.
0: फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे।
4: इन तीनों में से मेरा कोई भी नाम नहीं, मुझे तो सिर्फ दिलावर कहते हैं।
0: उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
5: यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी।
6: हाँ, देवी जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी,
5: ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था,
7: मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है।
0: जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी।
8: मैंने जिस मंत्र की साधना की, उसे ध्यान से

0: इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
1: अभी तक की जानकारी के अनुसार आलम आरा फिल्म की कोई भी प्रति मौजूद नहीं है। इस फिल्म का पुनर्निर्माण 1956 और 1973 में नानू भाई वकील के निर्देशन में किया गया। इस फिल्म के प्रचार में प्रयोग की गई ये टैगलाइन आज के दौर में भी कितनी सटीक और सार्थक है। All living, breathing, 100% talking।
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज,
1: बांगुई।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजदूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
0: इस तरह शहर से आए लोग जंगल से बेरोक टोक लकड़ी काटते रहे और मुखिया बांगुई को माला माल करते रहे। मुखिया को गांव से, गांव के लोगों से, खेतीबाड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसे तो सिर्फ अपने शानदार तिमंजिले मकान के बनकर पूरा होने में दिलचस्पी थी। उधर गांव के लोगों के पास खाने को नहीं था। और इधर मुखिया अपने ऊंचे मकान में बैठा बांसुरी बजा रहा था। तभी आ गया बरसात का मौसम।
3: ए, ए, ए, बात है।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
4: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: अरे वाह, ये भी
2: कोई इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
4: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
4: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
5: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
2: अच्छा

0: और मुखिया जी क्या फाके करें, मैं कहता हूँ भाग जाओ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है ना,
1: गांव वालों की बेरोजगारी, भूख, बीमारी की समस्याएं बढ़ती रही। मगर मुखिया बांगुई इन सब से बेखबर अपने ऊंचे मकान में मगन था। एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही। नदी, नाले, बांध सभी उफनने लगे। व्हाइट वोल्टा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। जंगल के जो पेड़ नदी की धारा को रोके रखते थे, वो कट चुके थे। इसीलिए नदी की धारा इस बार बेरोक टोक गांव में घुस आई। गांव वाले घर बार छोड़कर ऊंची पहाड़ियों की तरफ भागने लगे। गांव के खेत, खलिहान, झोपड़े, मकान पानी में डूब गए। आखिर एक दिन
2: मुखिया जी, मुखिया जी।
3: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
2: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
3: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
2: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
3: तो भरने दो।
2: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
3: अरे तो जाने दो।
2: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
3: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
2: लेकिन मुखिया जी,
3: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
2: जी मगर
3: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
4: मुखिया जी,
3: अब क्या है?
4: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
3: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी,
3: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
2: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
3: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
3: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
3: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल भी पानी में डूब गई तो ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा।
5: हे भगवान, हे भगवान, मैं अरे कहाँ जाऊँ मैं? मैं ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ मैं! नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। मैं भाई, लेकिन लेकिन ये पानी तो मुझे मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद शायद मेरी मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई उस पेड़ पर भूखा बदहाल 4 दिनों तक बैठा रहा और सचमुच इस घटना ने मुखिया बांगुई की आंखें खोल दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि भूख क्या होती है, बेघर बार होने का दुख क्या होता है। इसके बाद जब वो अपने उजड़े गांव के निवासियों के बीच पहुंचा तो उसने अपने हाथों से उन सब के लिए झोपड़े बनाए और हाँ, अपने हाथों से बहुत से पेड़ भी लगाए। फिर कभी किसी को उन्हें काटने नहीं दिया।
1: दीजिए नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: संतुलित आहार।

तू एक होनहार लड़की थी। पढ़ाई में तो वो तेज थी ही, पर उससे भी ज्यादा उसे खेल प्यारा था, जिसके लिए वो भोजन भी छोड़ देती थी। वो माँ की डांट तो खा लेती, पर नहीं खाती तो खाना ठीक से नहीं खाती। अरे भाई, उसे खेलने की जल्दी जो लगी रहती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि खाना न खाने की वजह से शीलू बहुत ही कमजोर होती चली गई। और इसी कमजोरी के कारण शीलू का खेलना भी बंद हो गया। अब तो ज्यादातर वो बिस्तर में ही लेटी रहती। हाँ भाई, वो बीमार हो गई थी। एक बार क्या हुआ कि इसी बीमारी की हालत में एक दिन नींद में शीलू को लगा मानो रसोई घर में रखी खाने की चीजें आपस में बातें कर रही हैं और उससे कुछ कह रही हैं। उसने देखा कि कटोरे में रखा दही फिसल फिसल कर उसके पास आया और बोला,

0: संग खेल खेला करती।
1: तभी कटोरी में रखी हुई दाल उछलते हुए बोली,

दाल ने अपनी बात जैसे ही पूरी की, रोटी की टोकरी में से एक रोटी दौड़कर शीलू के पास आई और बोली,

तभी क्या हुआ बच्चों, कढ़ाई में रखी तरकारी यानी सब्जी भी शीलू के पास आ गई और वो बोली,

इसके बाद अचानक शीलू को किसी के आने की आवाज आई। शीलू ने गौर से देखा, अरे ये तो गोल मटोल लाल लाल सेब है जो बड़ी देर से सबकी बातें सुन रहा था। सेब बोला,

यानी आहार जब संतुलित होता है, यानी शीलू अगर खाती थोड़ी मात्रा में लेकिन ठीक समय पर दूध, दाल, रोटी, सब्जी और दही, तो ये भोजन होता एकदम सही, क्योंकि इसमें मिलता शीलू को प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। कहो कैसी रही।

0: तत्व सभी बात।
1: सेब की बात सुनकर शीलू की नींद अचानक खुल गई और न जाने उसे क्या हुआ कि उसने जल्दी से अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए आप मेरे लिए रोटी सब्जी दूध दही और रसोई में जो भी खाने की चीज रखी हो उसे जल्दी से ले आओ, कुछ भी हो। माँ को बड़ी खुशी हुई कि शीलू ने कम से कम कुछ खाने को मांगा तो सही।
2: संतुलित आहार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: आधा पूरा।

0: 메콩강.
1: 메콩강.
2: 메콩강.
1: 메콩강.
2: 메콩강.
1: 메콩강.
3: 아리 아리 아리. 준누 문누 또 बहुत परेशान है।
4: हाँ दीदी।
3: भला बताओ तो क्यों परेशान है?
4: रसगुल्ला खाने के लिए।
3: अरे भाई, तो फिर खाते क्यों नहीं?
4: क्योंकि क्योंकि
3: अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है? देखो, रसगुल्ला तो है एक, और चुन्नू मुन्नू है दो भाई, तो दोनों पूरा पूरा रसगुल्ला कैसे खा सकते हैं?
4: हाँ दीदी, ये बात तो है।
3: तो अब वो क्या करें, जरा बताओ तो। नहीं समझ में आई? चलो इसी बात पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ।
1: हाँ दीदी, कहानी कहानी।
3: कहानी सुनकर तुम ये समझ जाओगे कि चुन्नू मुन्नू क्या करें। ठीक है?
4: ठीक है।
3: तो सुनो, गोपाल और मोहन दो दोस्त थे। कौन थे?
1: दोस्त।
3: दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते और एक ही साथ खाना भी खाते।
4: अच्छा।
3: एक दिन की बात है, मोहन की माँ बीमार हो गई। मोहन ने माँ से कहा कि आज खाना मत बनाओ, मैं एक सेब लेकर स्कूल जाता हूँ। तो बच्चों, मोहन एक सेब लेकर स्कूल चला गया। क्या लेकर गया स्कूल?
1: सेब।
3: एक सेब, शाबाश। और मोहन का दोस्त गोपाल उस दिन एक रोटी लेकर आया।
4: अच्छा।
3: मोहन और गोपाल साथ में ही खाते थे ना?
4: हाँ, वो साथ में खेलते भी थे और खाते भी साथ में थे।
3: शाबाश। जब दोनों खाना खाने बैठे तो दोनों ने अपना अपना खाना निकाला। बोलो तो उन दोनों ने क्या क्या निकाला?
4: मोहन ने एक सेब निकाला।
3: हाँ।
4: और गोपाल ने एक रोटी निकाली।
3: बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि उन दोनों ने क्या किया?
4: क्या किया दीदी?
3: गोपाल ने एक रोटी निकाली और एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया।
4: क्या कर लिया दीदी?
3: उसने एक पूरी रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए।
4: अच्छा, रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए।
2: ओहो, तो इस तरह उसने एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया।
3: बिल्कुल सही।
2: तो फिर क्या हुआ दीदी?
3: तो अब हुआ ये कि आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली।
4: अच्छा, आधी रोटी गोपाल को मिली
2: और आधी रोटी मोहन को मिली।
3: शाबाश। अब दोनों दोस्तों ने आधी आधी रोटी खाई।
4: वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, एक ही रोटी

0: आधा आधा कर लिया
1: और आधा चुन्नू ने खाया और आधा मुन्नू ने खाया।
2: शाबाश। आ गई ना बात समझ में?
1: हाँ दीदी।

0: अच्छा दिलाती हूँ खिलौने खिलौने वाले ओ खिलौने वाले
1: जी बहन जी
0: इधर आओ
2: जी बहन जी क्या दूँ
0: खिलौने वाले इन बच्चों को खिलौने दे दो
3: मैं चश्मा लूंगा मैं गेंद लूंगी मैं बल्ला भी लूंगा
4: और वो देख गुड़िया कितनी सुंदर है मैं तो गुड़िया भी लूंगी
3: हाँ मैं भी
0: बच्चों तुम्हें खिलौना तो मिलेगा पर एक एक ही खिलौना मिलेगा बस
3: अच्छा तो मैं गुब्बारा लूंगा
0: ठीक
4: नहीं मैं गुब्बारा लूंगी
3: मैं भी गुब्बारा ही लूंगा
4: मैं भी गुब्बारा लूंगी
0: अरे
3: गुब्बारे चाहिए हमें गुब्बारे चाहिए
2: बच्चों मेरे पास तो एक ही गुब्बारा है तुम दोनों को कैसे दूं
3: कोई बात नहीं भैया हम गुब्बारे का आधा आधा कर लेंगे
2: गुब्बारे का आधा आधा कैसे करोगे भैया
4: हम गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे हमारी दीदी ने बताया है हमें
2: नहीं बेटे गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते
0: हाँ बच्चों गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते
3: क्यों चुन्नू मुन्नू ने भी तो रसगुल्ले को आधा आधा कर लिया था वैसे ही हम भी गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे
0: ये कोई रसगुल्ला थोड़े ही है ये आधा आधा करने से फट जाएगा
3: नहीं हम तो
4: हम
3: कर लेंगे
0: अरे बेटा भला गुब्बारा आधा आधा कैसे होगा
4: नहीं हम तो गुब्बारा लेंगे हम
0: अच्छा अच्छा ठीक है तुम गुब्बारा लो और खुद ही आधा आधा करके देख लो देखो ये आधा होता है कि नहीं देखो गुब्बारे वाले
1: जी बहन जी
0: जरा ये गुब्बारा दे दो इन बच्चों को
2: लीजिए बहन
3: ला भैया लो अ, अ, अ, अ, अ।
0: देखा फट गया ना गुब्बारा मैंने कहा था ना गुब्बारा आधा करोगे तो फट जाएगा
3: तो क्या अब हम इससे नहीं खेल सकेंगे
0: बच्चों सब चीजें आधी नहीं की जाती।

0: जैसे तुमने अभी गुब्बारा आधा किया तो वो फट गया और बेकार हो गया। अब तुम इससे नहीं खेल सकते।
1: तो दीदी, क्या ये गेंद भी नहीं आधी हो सकती?
0: आधी तो कर सकते हैं, पर आधी करने से ये बेकार हो जाएगी।
1: तब तो ये गुड़िया, पतंग, चश्मा कुछ भी आधा आधा नहीं हो सकता?
0: नहीं बेटे, इन्हें भी आधा नहीं कर सकते। ये भी आधा करने से बेकार हो जाएंगी।
1: अच्छा, तब तो मैं गेंद लूंगी
2: और मैं एक बल्ला, दोनों मिलकर खेलेंगे।
1: हाँ, दोनों मिलकर खेलेंगे।
0: अब गेंद और बल्ला आधा आधा तो नहीं करोगे ना?
1: नहीं दीदी, ये कोई सेब और रोटी थोड़ी ही ना है।
0: खिलौने वाले
3: अजी,
0: इनको दे दो जो खाते हैं।
3: अजी बहन जी, बोलो बच्चों, क्या दूं?
1: मैं तो लाल बल्ला।
2: मुझे वो लाल नहीं, हरी वाली गेंद चाहिए।
3: हरी वाली ले लो। और ये तुम्हारा बल्ला और ये तुम्हारी क्या, गेंद।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी द्वारा रचित कहानियों पर आधारित गीतों की श्रृंखला कथा।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम आग की कहानी।
1: दादी माँ देखिए ना, भैया मुझे माचिस नहीं जलाने दे रहा।
2: भैया ठीक ही कह रहा है बिटिया, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें माचिस नहीं जलानी चाहिए।
1: लेकिन दादी माँ मुझको तो जलानी है।
2: क्या करोगी माचिस जलाकर?
3: मैं भी माँ की तरह चूल्हा जलाऊंगी, रोटी सब्जी बनाऊंगी। नहीं तो दादी माँ
2: नहीं तो क्या?
1: नहीं तो मेरे गुड्डे गुड़िया को कच्ची रोटी और कच्ची सब्जी ही खानी पड़ेगी दादी।
2: वाह बिटिया वाह, खूब जानती है आग का उपयोग।
1: ओ दादी माँ लाइट चली गई।
2: हाँ बेटी लाइट तो गई।
1: भैया लाइट चली गई।
4: अरे चिल्लाओ मत, मैं अभी माँ से मोमबत्ती लेकर आता हूँ।
1: हाँ लाओ जल्दी। ओ दादी माँ आप किधर गई?
2: डरो मत मुन्नी, मैं भी यही हूँ, लेकिन अंधेरे में तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ। ये लो, भैया भी मोमबत्ती लेकर आ गया।
1: दादी माँ लाइट चली गई तो हमने फौरन मोमबत्ती जला ली,
4: और माँ ने भी रसोई घर में लालटेन जला ली।
1: ये माचिस तो बड़े काम की चीज है।
2: उस वक्त की सोचो जब दिया सलाई या लाइटर नहीं होते थे, आग जलाना कितना मुश्किल काम था।
1: अच्छा दादी माँ, क्या पहले मनुष्य को आग जलाना नहीं आता था? तो फिर वो खाना कैसे बनाता था?
2: बेटा बहुत पुरानी बात है, जब मनुष्य ने आग जलाना नहीं सीखा था, वो कंदमूल कच्चे ही खाता था।
1: अच्छा?
2: यहाँ तक कि आदि मानव कच्चा मांस ही खाता था।
4: फिर आग की खोज कैसे हुई दादी माँ?
2: बेटा आग तो प्रकृति में पहले से ही थी, हमने आग की खोज नहीं की, बल्कि प्राकृतिक वस्तुओं से ही आग जलाना सीखा। देखो ऐसा माना जाता है कि विशेष चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी निकली, और फिर आग जलाना मनुष्य ने अचानक ही सीख लिया।
1: चकमक पत्थर से?
2: हाँ बेटी, उन दिनों सूखे तिनकों और पत्तों को इकट्ठा करके पत्थर या सूखी लकड़ी को रगड़कर चिंगारी पैदा की जाती थी। लो सुनो आग की कहानी पर ये कविता।

0: कच्चा मांस खाता था?
1: हाँ, क्योंकि उसे आग जलाना आता ही नहीं था। पत्थर से पत्थर को रगड़ा, सूखे पत्तों ने आग को पकड़ा।

0: हड्डी से हड्डी टकराना सीख लिया था आग जलाना।
1: कहानी सुनकर मजा आ गया।
2: वाह वाह दादी माँ, क्या कहानी सुनाई है। दादी माँ, दो हड्डियों को रगड़ने से आग क्यों निकलती है?
3: बेटा, क्योंकि हड्डियों में फास्फोरस होता है।
1: सूखी लकड़ियों को रगड़ने से भी आग जल जाती है ना दादी माँ?
2: लो, ये छोटी दादी भी पूछेगी सवाल।
1: देखो ना दादी माँ, भैया मुझे चिढ़ा रहा है।
3: अरे भैया।

0: भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता आया है। साथ ही रेडियो टंटाबिल 90.8 FM की एप्लीकेशन को न केवल किसानों ने बल्कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने भी अपने फोन में डाउनलोड किया है और रेडियो टंटाबिल के खेतीबाड़ी कार्यक्रम से खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्र किया है। आइए मिलते हैं खुटाया स्कूल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी से और सुनते हैं उसकी मुँह जबानी।
1: मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है और मैं रोज टंटाबिल रेडियो को सुनता हूं। उससे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और कृषि संबंधित बहुत अच्छी ही जानकारी मिलती है। मैं मेरे दोस्तों को भी प्रोत्साहित करता हूं कि वो इस रेडियो को सुने और कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटाबिल 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, चलते हैं रामा ब्लॉक के खेड़ा गांव में और मिलते हैं कुछ किसानों से और उनसे चर्चा करते हैं कि इस बार वो कौन सी खेती करना चाहते हैं और कौन सी खेती उनके लिए फायदेमंद होती है, उनके पास कौन सी जमीन है और कौन सी जमीन में कौन सी खेती वो करते हैं। चलते हैं खेड़ा गांव में और सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
3: तार
4: मतलब के

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आइए जानकारी को बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: जानते हैं कि खेत की तैयारी से लेकर किस्मों के चुनाव से जुड़ी हुई कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है।
3: जैसा कि आप जानते हैं कि कपास हमारे देश की एक प्रमुख रेशे वाली फसल है। कपास की खेती, हालांकि हमारे देश में जो दुनिया में खेती होती है उसके लगभग एक तिहाई क्षेत्र में होती है, लेकिन जो कपास का उत्पादन है वो दुनिया का लगभग 1/5 है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ कपास की औसत उपज जो लगभग 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, दुनिया के दूसरे देश जैसे ब्राजील, वहाँ की लगभग 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चाइना की लगभग 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा अमेरिका की लगभग 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, उनकी अपेक्षा बहुत कम है। अगर हम विश्व के कपास के औसत उपज को देखें तो उसकी अपेक्षा जो लगभग 700-800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है उससे भी काफ़ी कम है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ किसान भाई, अधिकतर किसान भाई उन्नत जो कृषि तकनीक हैं उनका प्रयोग नहीं कर रहे और उन्नत कृषि तकनीकों का प्रयोग न करने के कारण जो कपास की औसत उपज बहुत ही कम है। हालांकि कपास का देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कपास के द्वारा देश के लगभग 6 मिलियन किसान उनको इससे जुड़े हुए हैं और इसके अतिरिक्त 60 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है जो कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कपास की खेती के लिए जो कीटनाशी, उर्वरक तथा उन्नत बीज उत्पादन करने में लगे हुए हैं और उससे जो ट्रांजैक्शन होता है उससे भी लोगों को काफ़ी रोजगार मिलता है। तो कपास की खेती हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यकता है कि इसकी अधिक उपज, हालांकि इस उपज को हम दोगुना तक यानी कि 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक आसानी से बढ़ा सकते हैं यदि हम कपास की खेती के लिए सभी उन्नत जो तकनीक हैं उनको प्रयोग करें। अब सवाल उठता है कि कपास की खेती उन्नत तकनीकों को प्रयोग करते हुए कैसे करें। कपास के लिए सबसे प्रमुख जो बात है वो है फर्स्ट पे उन्नतशील किस्में। कपास की मुख्य रूप से 3 प्रकार की किस्में जो उपलब्ध हैं, एक तो देसी कपास की किस्म, दूसरी बीटी कॉटन किस्म और तीसरी अमेरिकन कॉटन किस्म। ये तीनों किस्मों की कई प्रकार की उन्नत किस्में हैं। जैसे देसी किस्म में RDCH9 ये बड़ी अच्छी किस्म है, LD 394 बहुत अच्छी किस्म है। इनकी उपज लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर तक हो जाती है तथा

0: कि जो गेनिंग परसेंटेज है, यानी कि जो कपास से जो रुई की प्रतिशतता है वह 34 से 35% तक है, तथा ये किस्में 160 से 170 दिनों कंप्लीट हो जाती हैं, तथा किसान भाई इनके बाद कपास की खेती के बाद उस खेत में गेहूं की फसल भी आसानी से ले सकते हैं। इस प्रकार अनेक बीटी कॉटन किस्म हैं जो बड़ी अच्छी किस्म हैं, और जिनमें जो कपास में जो सबसे प्रमुख जो समस्या होती है पिंक बॉलवर्म की, उसकी उन किस्मों में समस्या बहुत ही कम होती है। यदि किसान भाई बीटी कॉटन किस्मों का प्रयोग करें तो उससे जो पिंक बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म और दूसरे कीड़े एवं बीमारियों से जो फसल में नुकसान होता है उसको भी काफ़ी कम किया जा सकता है। RCH सीरीज की कई किस्में हैं जो काफ़ी उन्नतशील हैं। अंकुर 127 बड़ी अच्छी किस्म है, और जो अमेरिकन कॉटन है PAU BT सेकंड किस्म, ये बड़ी अच्छी किस्म है। इनके द्वारा किसान भाई कपास की खेती करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। RCH 317, अंकुर 651, ये बड़ी अच्छी किस्म है। इनके द्वारा किसान भाई कपास की अच्छी पैदावार यानी कि 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर तक प्राप्त कर सकते हैं। इनकी गिनिंग परसेंटेज 34 से 35% तक है, तथा ये सभी किस्में 160 से 170 दिन में पक जाती हैं, और इन फसलों के बाद किसान भाई गेहूं की फसल भी आसानी से ले सकते हैं। तो आवश्यकता है कि किसान भाई जब अपने खेत में किस्मों का चयन करें तो उन्नत किस्मों का ही चयन करें, क्योंकि इन किस्मों में जो कीड़ों से फसल को नुकसान होता है उसको काफ़ी कम किया जा सकता है, पैदावार अच्छी होती है, और इन किस्मों के बोने के बाद में दूसरी फसल जैसे गेहूं रबी सीजन में उसको भी आसानी से लिया जा सकता है। कपास के लिए भूमि का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि भूमि अच्छी प्रकार की जिसमें कपास की खेती अच्छी प्रकार से हो सके, भूमि उस भूमि की pH 6 से 8 उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तथा पानी धारण करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, वह भूमि जो उसमें फर्टिलिटी जो उसकी उर्वरता है उस वह अच्छी होनी चाहिए, तथा भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो भूमि का चयन करते समय किसान भाइयों को ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कपास की बुआई का समय चल रहा है, तथा अधिकतर क्षेत्रों में जहां किसान भाई गेहूं की फसल काटने के बाद कपास की बुआई प्रारंभ कर रहे हैं, तो गेहूं के खेत की अच्छी प्रकार से जुताई कर लें। एक जुताई डिस्क हैरो से करें, उसके बाद 2-3 जुताई हैरो और कल्टीवेटर से खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करके उसमें अगर संभव हो सके तो किसान भाई 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई हो उसको खेत में अच्छी प्रकार से मिला दें, तथा उसके बाद ही बुवाई करें। ध्यान रहे कि जो गोबर की खाद है वह अच्छी प्रकार से सड़ी होनी चाहिए। यदि गोबर की खाद कच्ची होगी तो उससे अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे दीमक का प्रकोप अधिक होता है, तथा उसमें खरपतवारों की समस्या अधिक होती है। कपास के लिए बीज की मात्रा का उचित मात्रा में बीज को प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो देसी किस्म है उनका बीज प्राय 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा जो हाइब्रिड किस्म है या बीटी किस्म है उनका बीज 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। जब हम कपास की बुआई करते हैं तो उसमें पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यदि हम उचित दूरी पर पौधे की बुआई करेंगे तथा पंक्ति की पंक्ति से पंक्ति की दूरी अच्छी रखेंगे तो पौधे को उचित मात्रा में खाद और उर्वरक मिलेगा, तथा उसको बढ़ने और फलने फूलने के लिए अच्छी प्रकार से प्रकाश और हवा मिलेगी। तो जो देसी किस्म है उनमें पौधे से पौधे की दूरी प्राय 60 से 30 सेंटीमीटर, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि बीटी कॉटन में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस प्रकार यदि हम एक हेक्टेयर में कुल मिला के उचित पौधों की संख्या रखें तो पैदावार अच्छी मिलेगी। खाद और उर्वरक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बुआई के समय किसान भाई अगर उपलब्ध है तो 10 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद दे दें, उसके बाद खेत में लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर, इसकी मात्रा कपास के लिए पर्याप्त होती है। जितनी नाइट्रोजन की मात्रा दे रहे हैं उसकी लगभग आधी मात्रा बुआई के समय देते हैं तथा फास्फोरस व पोटेशियम की पूरी मात्रा ये सभी बुआई के समय दे देनी चाहिए। पास को कुल पानी की मात्रा लगभग 800 से 1200 मिलीमीटर की जरूरत होती है। तो इस प्रकार अगर किसान भाई उचित मात्रा में खाद दें, उचित मात्रा में बीज प्रयोग करें तथा बीज को उपचारित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम बीज का उपचार करेंगे तो भूमि जनित काफ़ी बीमारियां हैं जिससे कपास की फसल को नुकसान होता है।
1: ये आवाज़ है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: तो कपास के बीज को उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी की 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की

0: दो दिन पश्चात तक कपास की फसल में पेंडी मेथली नामक खरपतवार नाशी की जो बाजार में उपलब्ध मात्रा है उसकी 3.3 लीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार से समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। लेकिन यह खरपतवार नाशी फसल उगने से पहले ही छिड़काव करना चाहिए, यानी कि जब फसल की बुआई करें तो उसके 2 दिन पश्चात तक छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद यदि खरपतवार आ जाते हैं तो उन पे इसका असर नहीं होगा। इसके बाद फिर खेत में 2 बार अच्छी प्रकार से गुड़ाई कर दें और उसमें मिट्टी चढ़ा दें तो खरपतवारों की समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से किसान भाई अगर इन सभी बातों का ध्यान रखें तो कपास की खेती से अच्छी पैदावार ले सकते हैं, तथा अगर अच्छी पैदावार होगी तो किसान भाइयों की आमदनी भी अधिक होगी तथा उनको उसके साथ साथ लाभ भी अधिक प्राप्त होगा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
2: आप लो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने जाना, कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है, कौन सा उपयुक्त कपास होना चाहिए, बीजों का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और भी इससे जुड़ी हुई जानकारियों को हम जानेंगे। उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भेली गीत को।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
2: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज खेती किसानी कार्यक्रम।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कपास से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: सफेद सोना। खेती में यदि किसी फसल की उपज को ये उपाधि प्राप्त है तो वो है रुई। ये कपास की खेती से प्राप्त होने वाली उपज है। कपास, जिसकी खेती हमारी परंपराओं में है। हम आदिकाल से कपास की खेती करते आ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि खेती यहाँ का आदि व्यवसाय है। कपास भारत की खेती की पहचान है, क्योंकि कपास की खेती के प्रमाण ऋग वैदिक काल से मिलते हैं। इतना ही नहीं, भारत को ये गौरव भी प्राप्त है कि इसने कपास की खेती को दुनिया भर में प्रचलित किया। अन्य प्रमुख देश जो आज कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, उनके यहाँ भी कपास की खेती भारत से पहुँची। कपास केवल कृषि व्यवसाय ही नहीं, बल्कि ये कृषि उद्योग भी है। कपास का उत्पाद रुई कपड़ा उद्योग का मुख्य आधार है। इस तरह कपास किसानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर श्रमिकों और व्यापारियों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। इसीलिए रुई को सफेद सोना भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले भारत से विश्व भर में कपास, रुई और वस्त्रों का निर्यात होता था। आइए इस बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं।
3: इसमें अब जो है ये अवस्था है, बीज का उपयुक्त चुनाव या बीज उपचार व पोषक तत्वों का वो जो है पूर्ण करना, ये सभी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं। अब किसान को इसमें विशेषकर खरपतवार और पानी का जल प्रबंधन का जो जल के प्रबंधन का ध्यान रखना पड़ेगा। खरपतवार ही जो है रहित खेत होना चाहिए, जिससे कि जल की जो है उचित मात्रा पौधों को मिले। अगर खरपतवार इस खेत में होंगे तो उसका भोजन पानी और हवा वो सभी जो है मुख्य फसल का हड़पेंगे। निश्चित रूप से फसल में जो है गिरावट आएगी और उसके उत्पादन में कमी होगी। अब चूंकि आप जो है यहाँ जैसा कि आपने बताया और हम देख भी रहे हैं कि मौसम बड़ा अनोखा है, कहीं कम बरसात है, कहीं ज़्यादा बरसात है, तो हमें इसमें पानी का उचित प्रबंध करना पड़ेगा। अगर कम पानी है तो हमें उसको जो है जो विशेष दो अवस्थाएं हमारी, जैसे फूल का बनना या जो है टिंडा या बॉल का बनना, उस पर हमें ये उचित ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय ज़मीन में पौधे के लिए प्रचुर मात्रा में नमी होनी आवश्यक है। और इसके लिए हम यह है खरपतवार निकालें या जल का जो है सही समय पर प्रयोग करें। चूसने वाले जो कीड़े हैं, पत्तियों को चूसते हैं या तने में चूसते हैं, बॉलवर्म में चूसते हैं, या उनके एपिकल बड होती है उस पर चूसते हैं और पौधे को काफ़ी ये जो है रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी वृद्धि कम कर देते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं, तो उसकी जो है पैदावार में काफ़ी नुकसान होता है। इसमें आपको जो है कीड़े हैं वो जो है बड़ा एक इसमें शेड्यूल काम में लेना पड़ता है। उसमें 4 या 5 का एक तरह का शेड्यूल है, किसान उसको उस शेड्यूल को जो है एक 15 से 20 या महीने के बीच में उस शेड्यूल को जो है अपनाए, तभी इस तरह की जो है कीड़ों का रोकथाम किया जा सकता है। जैसे प्रथम जो है शेड्यूल है वो हम जो है जून से जुलाई के बीच में करेंगे, दूसरा जुलाई से और प्रथम जुलाई से प्रथम सप्ताह से लेके और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक जो है करेंगे, तीसरा हम सितंबर में और पीछे मिड सितंबर से लेके अक्टूबर और अक्टूबर के महीने में। इस तरह से 5 शेड्यूल हैं। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि कोई दवाई का दोबारा हम जिस दवाई को जिस रसायन को काम में ले रहे हैं छिड़काव के लिए, उसका दूसरा जो है किसी तरह से पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें जब ये ध्यान रखे आदमी का आर्थिक रूप से नुकसान जो है फसल को हो रहा है, अब ज़्यादा जिस तरह से आक्रमण है कीट का, तो तभी करें। कम आर्थिक रूप से भी ये भी देखें कि आर्थिक रूप से मुनाफा हमें हो रहा है, उस हिसाब से ही उसका जो है स्प्रे करें। अब इनमें यहाँ आने वाला जैसे ये कीड़ा है सफ़ेद मक्खी है इस समय, या आपका जो है सूढ़ी का वर्म है, हेयर कैटरपिलर है, इस तरह के कीड़े इस समय आमे, तो इस समय हम जो है दवाई का जो है जो शेड्यूल है उसमें हम ये कह सकते हैं कि डाइमेथियोड, जिसको रोगोर बोलते हैं, 25 EC या डाइडेमेटन मिथाइल डाइमेटोन जो होती है उसका यूज़ करें, या हम जो है पाउडर के रूप में मिथाइल पैराथिन 2% या मिथाइल मेलाथियोन जो है 5% दवा का हम इसमें बुरकाव करें। 25 किलो पर हेक्टर के हिसाब से इसमें काम ले सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है इस इन कीड़ों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें जो है डाइमेथियोट 30 EC जो है उसमें 1 से 1.25 लीटर दवा को हम जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल कर और उसका हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। या आप जो है इसमें आगे जो है ये डाइमेथियोट है, उसके बाद आपको जो है मोनोक्रोटोफॉस का भी, मोनोक्रोटोफॉस 36 WSL जो होती है उसका भी हम जो है 1 से 1.25 लीटर पानी काम में ले सकते हैं। अब इसमें ये है कि अगर ये दवाएं उपलब्ध ना हो तो साइपरमेथ्रीन 25 EC को हम जो है 125 ml दवा को 400 से 500 लीटर पानी में घोल कर और उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे इन कीड़ों का प्रकोप सावधानी आसानी से और रोका जा सकता है। इसका जो है स्प्रे या छिड़काव सावधानी पूर्वक आप फसल पर करें। छिड़काव करते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हवा का जो है विपरीत प्रभाव में जो है छिड़काव ना करें, और या तो सुबह या शाम के टाइम में हम इस पर फसल पर छिड़काव करें, और छिड़काव सामान्य रूप से फसल पर होना चाहिए। और आपको सुरक्षा के रूप में फेस माउथ या हैंड ग्लव्स वगैरह जो सभी हैं वो सभी आपको जो है काम में लेना चाहिए।
2: आज विश्व के 1 दर्जन से अधिक देश कपास की खेती करते हैं। इनमें भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील, मिस्र, सूडान, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको हैं। भारत में 119 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में कपास की खेती की जाती है। कपास उत्पादन में हम आज भी सबसे बड़े उत्पादक हैं। हमारे देश में कपास की खेती गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में की जाती है। हालांकि सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। इन 3 राज्यों में देश की कुल उपज की 60% कपास पैदा होती है, जबकि देश के कुल कपास की खेती के क्षेत्रफल में अकेले गुजरात की हिस्सेदारी 21% है। देश के किसानों के लिए कपास हमेशा से एक नकदी फसल रही है। इससे किसानों को तत्काल आय प्राप्त होती है। इसकी खेती के लिए काली चिकनी मिट्टी उपयुक्त है। इसके लिए मध्यम या सामान्य से कुछ अधिक तापमान उपयुक्त माना जाता है। कपास की अच्छी उपज 21 से 27 सेंटीग्रेड तापमान में ली जा सकती है। तापमान इससे अधिक होने पर भी कपास की अच्छी खेती होती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत को कपास की खेती के अधिक अनुकूल माना जाता है, लेकिन अधिक बरसात कपास की खेती के लिए नुकसानदेह है। कपास की फसल सामान्य तौर पर 200 से 230 दिन में तैयार हो जाती है। भारत में 3-3 तरह की कपास की खेती की जा रही है। इनमें लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास है।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आइए जानते हैं कपास के ऊपर कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और हम इसे कैसे निजात पा सकते हैं।
2: इसमें कई तरह के कीट आते हैं। शुरू की अवस्था में इस पर जैसीड का और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद लीफ पर जो है माइलोसीरस का प्रकोप काफ़ी होता है। जब बाल ओपनिंग होती है उस समय रेड काटन बग और डस्की काटन बग का प्रकोप काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। और फ्लावरिंग के समय जो है कई तरह के बाल वर्म का प्रकोप बाल्स पे होता है, जिसकी वजह से फसल का नुकसान बहुत अधिक होता है। जैसीड और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप नॉर्मली 30 से 35 दिन की क्रॉप जब होती है तब जो है इसका स्टार्ट हो जाता है प्रकोप। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे 30-35 दिन तक फसल पर जो सकिंग के पेस्ट हैं, जिसमें जैसीड और व्हाइट फ्लाई होती है, उसके प्रकोप से फसल को बचाया जा सकता है। इसके बाद 30-35 दिन के बाद जब व्हाइट फ्लाई और जैसिड का प्रकोप फसलों पर देखा जाए, उस समय जो है इमिडाक्लोपिड और थायमेथॉक्सान का छिड़काव भी कर सकते हैं किसान भाई, जो जैसिड और व्हाइट फ्लाई के प्रकोप को कम करने में काफ़ी सहायक होता है। फ्लावरिंग के समय बालवर्म कॉम्प्लेक्स का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसमें चित्तीदार इरियास का प्रकोप होता है, पिंक वालवर्म का प्रकोप होता है और एक अमेरिकन वालवर्म हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। ये तीन वालवर्म का प्रकोप जो है बाल फॉर्मेशन के समय कपास की फसल पे होता है। बालवर्म कॉम्प्लेक्स को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के कीटनाशक उपलब्ध हैं, जिसका किसान भाई छिड़काव करके बालवर्म के इन्फेस्टेशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। वैसे बीटी काटन लगाने से इन वालवर्म का प्रकोप काफ़ी मात्रा में नहीं होता है और बीटी का प्रयोग करने की वजह से किसान भाई जो है बालवर्म के प्रकोप को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये वालवर्म कॉम्प्लेक्स का प्रकोप फसल पर देखा जाता है तो कई तरह के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें फ्लूबेंडियामाइड है। इसका छिड़काव किसान भाई 10 ग्राम 15 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़क सकते हैं। क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो बाजार में कोराजिन के नाम से पाया जाता है, इसका छिड़काव किसान भाई 5 ml कोराजिन को 15 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एसीफेट है, एसीफेट पाउडर आता है जिसको पानी में मिक्स करके आप एसीफेट का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है फिप्रोनिल है, फिप्रोनिल का प्रयोग किसान भाई 2 ml कीटनाशक को 1 liter पानी में मिला करके घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में स्पाइनोसेड भी उपलब्ध है, जिसका 5 ml कीटनाशक को 15 liter पानी में मिला करके उसका घोल बना करके किसान भाई अपना कपास की फसल पर अगर छिड़काव कर देते हैं तो कि जो बालवर्म का कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। स्टार्टिंग में फ्लावरिंग से थोड़ा सा पहले जो है मॉनिटरिंग के लिए फेरोमोन ट्रैप बाजार में उपलब्ध हैं, इसका प्रयोग भी किसान भाई कर सकते हैं। इससे जो है जो आने वाले जो बालवर्म के कीट हैं उनके पॉपुलेशन को मॉनिटर किया जा सकता है, ताकि उसके उपचार के लिए हम जो है उपयुक्त तरीका अपना सकें। तो फेरोमोन ट्रैप भी बाज़ार में तरह तरह की उपलब्ध हैं, जिसको फ्लावरिंग से थोड़ा सा पहले किसान जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्मली 5 ट्रैप जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से मॉनिटरिंग पर्पस के लिए लगाई जाती है, और अगर इसको कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन ट्रैप की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, जो लगभग 20 से 25 ट्रैप पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर किसान भाई लगाते हैं तो काफ़ी हद तक जो है ये बालवर्म के जो एडल्ट हैं उनको ट्रैप किया जा सकता है। और

0: कर रहे हैं। एक दशक में प्रति हेक्टेयर उपज 300 किलोग्राम से बढ़कर 500 किलोग्राम तक हो गई है। हालांकि अभी इसे विश्व औसत 700 किलोग्राम तक पहुंचाया जाना है। भारत सरकार के कपास प्रौद्योगिकी मिशन ने उपज बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब कपास की खेती में नए अनुसंधान से इसकी फसल तैयार होने की अवधि को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नागपुर स्थित कपास अनुसंधान संस्थान 100 दिन में तैयार होने वाली किस्म विकसित करने में जुटा है। नए अनुसंधान से कपास की खेती से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
1: किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडा भील 90.8 FM के साथ। किसान साथियों, अभी हमने कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जाना। हमें कौन सी भूमि में कपास की खेती करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां कपास में होती है और साथ ही कौन कौन सी कीटें सीजन के हिसाब से कपास पर हावी होती है और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम आगे जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। आइए कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक किसान की मुजबानी।
2: यूरिया अभी तक मैंने इसमें दिखाया नहीं, और अब की बार बारिश होगी तब इसमें यूरिया डालूंगा। ये आपने सुना होगा भाई, खेती समरे नड़ाई थे, जिंदगी समरे पढ़ाई थे, बार बार खेत का निरीक्षण करते रहो सुबह शाम। मैंने सिर्फ अभी तक इसमें 15 दिन हो गए एक स्प्रे किया था, वो भी अपना नेचुरल काढ़ा तैयार करके जड़ी बूटियों द्वारा, और सिर्फ मैं दो ही स्प्रे करता हूँ। और कीटनाशक के बारे में ये कहता हूँ मैं, एक तो भाई ये आप मिला के कीटनाशक मत छिड़को अंदा दूंगा, जैसे मोनो मिला लिया उसमें रगोर मिला लिया, एंडोसल्फान मिला लिया, फेनवल रेट मिला लिया, वो समीकरण क्या हो जाता है कर दिया, डीएपी मिला दिया, यूरिया मिला दिया, जिंक पोस्ट वगैरह वगैरह, उसका साल्ट तो देखो क्या बनता है।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: चौथे महीने की 25 तारीख को लगाया था।
3: हाँ, ये वैरायटी भी एक बार बता दीजिए।
2: वैरायटी 776 नंबर वैरायटी लगाई है।
3: राशि
2: 776 जी, ये ही पिछली बार लगाई थी, इसका रिजल्ट अच्छा है।
3: अच्छा,
2: और इसमें मैंने लगाने के बाद में पहले डीएपी वगैरह कुछ नहीं बोया,
3: मतलब बुआई के समय पर आपने कोई खाद इसमें नहीं डाली?
2: कुछ नहीं, खाली सूखे की बांध करके पानी लगा के इसको बिजाई करवा दी, 3 पैकेट बीज डाले और 1.5 एकड़ में राशि 776। और उसके बाद मैंने पहले अड़वा के बाद दूसरी अड़वा में इसमें खाली एक बैग डीएपी बोया है।
3: हाँ, कि जो ट्रैक्टर से सिलर द्वारा निराई गुड़ाई करते हैं ना, उस टाइम पर आपने 1.5 एकड़ में 45 किलोग्राम या फिर 50 किलोग्राम डीएपी
2: डाले है।
3: ठीक है,
2: उसके बाद मैंने इसमें दूसरी अड़वा करवाई है, उसमें मैंने जैविक खाद, ये जो बटोड़े की होती है ना गली सड़ी खाद, एक बैग ये और एक बैग मुर्गा वाली छाण की, दोनों
3: जो पोल्ट्री फार्म की जो खाद होती है, तो मुर्गी की बीट होती है
2: वो, और दोनों को मिला करके ये बोया है। यूरिया अभी तक मैंने इसमें दिखाया नहीं है। यूरिया दिखाने का कारण ये है कि यूरिया डाल दो परवाह, हवा चलती है आजकल, उसमें इसमें चिड़चिड़ापन है, मरोड़िया माऊ तेला सब कीटनाशक ले जाते हैं। क्यों? यूरिया तो आपको सभी मालूम है कि यूरिया में नाइट्रोजन ज्यादा होती है।
3: हाँ,
2: और यूरिया में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन पर तो ये ऑटोमेटिक आक्रमण होता
3: है, शत्रु कीट जो है नाइट्रोजन की तरफ आकर्षित होता है।
2: अब मैंने इसके लिए यूरिया नहीं डाला है, ला के रख रखा है, जब ये आज चली ये हवा चलेगी और अब की बार बारिश होगी तब इसमें यूरिया डालूंगा, यानी 50% फल आने पर ही मैं इसको यूरिया देता हूँ। पौधा बिल्कुल सेफ है, कोई इसमें वो शिकायत नहीं है।
1: किसान साथियों, जैसा कि इस अपने किसान भाई ने हमें कहा कि उन्होंने अभी तक यूरिया नहीं डाला है, और साथ ही ये बता रहे हैं कि हवा को ध्यान में रखकर यूरिया डालना चाहिए।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। आइए जानते हैं कैसे हम हवा को ध्यान में रखते हुए यूरिया का प्रयोग करना चाहिए।
2: इस समय ये आज चली गई हवा चलनी थी, अगर ये 15 दिन चल जाएगी तो इसमें फल की कोई कमी नहीं रहेगी,
3: मतलब पश्चिमी दिशा से। हाँ, जो हवा
2: पश्चिमी दिशा से हवा चलनी थी पिछवा, और इसमें अब नमी बनाए रखना इस हवा में, क्योंकि ये हवा 2-3 दिन चलेगी तो फसल में सूखा भी आ जाएगा, क्योंकि अब पौधा खुराक ले रहा है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कम खर्च अधिक पैदावार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, किसान बने माला माल।
3: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
2: क्यों? सफलता ही मेहनत ही सफलता की कुंजी है।
3: बिल्कुल,
2: आप जो बुजुर्गों से सुना होगा कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ, अपना काम है कर्म करना, लेना देना मालिक का हाथ है।
3: बिल्कुल, किसान जो है मेहनत के बलबूते ही जो हासिल करता है सब कुछ,
2: और मेहनत करने वाले को भगवान अपने आप देता है, कहते हैं ना देता है तो सफर पाड़ के देता है, लेता है तो भी ले लेता है। मैंने सिर्फ अभी तक इसमें 15 दिन हो गए एक स्प्रे किया था, वो भी अपना नेचुरल काढ़ा तैयार करके जड़ी बूटियों द्वारा।
3: हाँ,
2: उसका और मोनो का,
3: और अब मोनोक्रोटोफॉस जो 36%
2: जो मोनोक्रोटोफॉस है उसका किया है, अभी इसका दूसरा 5-7 दिन में और करने वाला हूँ, वो दूसरा काढ़ा तैयार कर दिया है, और सिर्फ मैं दो ही स्प्रे करता हूँ।
3: अच्छा, मतलब पूरे सीजन में कपास में आप केवल दो स्प्रे करते हो,
2: बाकी और ज्यादा मौसम बताएगा, लेकिन दो ही करता हूँ मैं तकरीबन।
3: हाँ,
2: हो सकता है मौसम की वजह से कई बार तीन भी करनी पड़ जाए।
3: हाँ, मतलब
2: वो तो समय बताएगा।
3: हाँ, कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो तीन भी लेनी पड़ सकती है स्प्रे। लेकिन आपने बताया कि जैविक फॉर्मूला, तो आप प्रत्येक स्प्रे के साथ में जो है ये घोल डालते हैं?
2: हाँ, ये बिल्कुल ये जरूरी डालता हूँ। इसमें ये 12-13 प्रकार के आइटमों द्वारा बना हुआ काढ़ा है। इसमें निम्बासिडिन नामक दवाई भी बन जाती है, नीम का तेल बन जाता
3: है। जो नीम का तेल हम बाजार से महंगे
2: भाव पर लोगे, वहाँ लुटोगे, पैसे लगाओगे, ये थोड़ी मेहनत का काम है।
3: हाँ, तो ये आप इससे मतलब उससे भी ज्यादा 10 वो तो एक केवल नीम का तेल होता है, लेकिन यहाँ पर 10 प्रकार की चीजें डालकर उससे 10 गुना
2: बेहतर है।
3: हाँ, बेहतर यहाँ पर तो आप तैयार कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के बलबूते पर। तो आप किसानों को जो कपास की खेती करते हैं उनको क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे, किस प्रकार से उनको करनी चाहिए जैविक खेती के साथ साथ में, जैसे आपने पेस्टिसाइड भी डालते हैं बड़ी सावधानी तरीके से, तो जरूरत के अनुसार उनको किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, क्या कहना चाहोगे?
2: मैं यही कहता हूँ उनको अपने हिसाब से, सबसे पहले तो कपास में मेन काम तो है उसकी नड़ाई गुड़ाई करना। आपने सुना होगा सब क्यों की बीमारी मिट्टी और पानी में है। अगर कपास के अंदर घास फूस नहीं होगा ना, तो वैसे ही मक्खी मच्छर कम होंगे,
3: कम आएंगे बिल्कुल।
2: हाँ, तो क्योंकि सुना है भाई जिंदगी समरे पढ़ाई तर खेती समरे नड़ाई गुड़ाई से, पहला काम तो ये है।
3: ठीक है, उसके बाद में खाद की
2: उसके बाद में खाद करो, आप हिसाब से यूज करो। ये आप कर दिया डीएपी मिला दिया, यूरिया मिला दिया, जिंक पोस्ट वगैरह वगैरह, उसका साल्ट तो देखो क्या बनता है। क्यों ऐसा काम वो क्यों करा आप? अपने खाली डीएपी बो दो, अपने बटोड़े के नीचे गड़ी सड़ी हुई जैविक खाद है।
3: हाँ, मतलब कहने का अभिप्राय यही है कि ये देखो कि पौधे को आवश्यकता किस चीज की है।
2: ये पौधा है ना, ये देसी खाद उनसे तो मजबूत हो गया। अब इसको ये काटा है, ये पत्ते के थ्रू इसको खुराक देगा
3: बिल्कुल।
2: हाँ, क्योंकि अब फल का टाइम चल रहा है।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आप लोग रेडियो आपड़ी बातें।
3: और इसके साथ में कीटनाशक के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे?
2: और कीटनाशक के बारे में ये कहता हूँ मैं, एक तो भाई ये आप मिला के कीटनाशक मत छिड़को अंदाजे।
3: हाँ,
2: जैसे मोनो मिला लिया, उसमें रगोर मिला लिया, एंडोसल्फान मिला लिया, फेनवलरेट मिला लिया, वो समीकरण क्या हो जाता है?
3: हाँ,
2: ऐसा करने की बजाय आप 5-7 दिन के अंतराल पर कर दीजिए। हाँ, इससे तो बेहतर वही होगा कि ये काफी आइटम मिलाने से उसकी
3: जैसे कीटनाशक में मिला लेते हैं, एनपीके डाल देते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है,
2: समीकरण दूसरा बन जाता है और उसमें काफी हमारे नुकसान भी हो जाता है।
3: उसका एक तो रिजल्ट तो कम होगा ही होगा, ये तो आप मान कर चलें। जितनी ज्यादा मात्रा में आप स्प्रे को या फिर जो
2: आपने सुना है कि मोनो बढ़वार करेगी, पत्ते का चिकनापन करेगी, माव तेला मरोड़िया साफ करेगी, एंडोसल्फान कीड़े की दवा होगी, और दूसरी वो किस चीज की होगी भाई, ये फूल पत्ती को गंदने नहीं देगी, इस तरह की बजाय आप 5-7 दिन के अंतरापल करें तो बेहतर होगा।
3: ठीक है
1: किसान साथियों, अभी जैसा कि आपने सुना, हमारे किसान भाई अपने खेतों में रासायनिक दवाइयों से कोसों कोसों दूर है। वो चाहते हैं कि अधिकतर वो खुद से बनाई हुई दवाई डाले, रसायनों से दूर रहे, रासायनिक दवाइयों से, रासायनिक खाद से आदि चीजों से। वो चाहते हैं कि उसका कम से कम प्रयोग करे, ज्यादा प्रयोग उसका ना करे, और वह खुद अपने घर पे ही 5 पत्तियों का घोल तैयार करते हैं। जो 5 पत्तियों का घोल है, यह न केवल कपास में इस्तेमाल किया जा सकता है, वरन इसे हम अन्य फसलों में भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रासायनिक फ्री है, ना इससे कोई हानि नहीं है, यह प्योर जैविक है। आप उसे खुद 5 पत्तियों के घोल से बनाया जा सकता है इसको।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपने कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, जिसमें उन्नत बीज, कपास में होने वाले नुकसान, कपास में होने वाले फायदे, कपास में पड़ने वाली कीटों और कपास के लिए उचित भूमि और उचित वातावरण क्या होना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम टूट भी जाते हैं और वहीं से हम खुद को दोबारा बनाना सीख जाते हैं। आज की हमारी कहानी और गेस्ट, उनकी जर्नी, उनका विश्वास कुछ ऐसा ही है। पेन से पर्पस तक का एक बहुत ही खूबसूरत सफर, एक सोलफुल जर्नी। प्लीज वेलकम लवीना झालानी जी, जो एक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर हैं, फाउंडर ऑफ कुशा डिवाइन होम हैं, और एक ऐसी हीलर हैं जिन्होंने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि सबसे पहले खुद को हील किया। तो चलिए आज का जिंदगी के रंग गीतों के संग आगे बढ़ाते हैं लवीना झालानी जी के साथ। तो लवीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं।
1: जी, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज आप बहुत कुछ कर रहे हैं और वो बहुत न्यू फील्स है हमारे लिसनर्स के लिए। तो हम डायरेक्ट डाइव करते हैं हमारे पहले सवाल से। आपने बहुत एक ब्यूटीफुल लाइन मुझे कही थी कि आपने प्राणिक हीलिंग को नहीं चूज किया, प्राणिक हीलिंग ने आपको चूज किया। तो वो कौन सा फेज था मैम, कौन सा एक मोमेंट था, एक चेंजिंग टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, जहां पे आपको ये रियलाइज हुआ कि यू नो दिस इज माय लाइफ पाथ और ये सिर्फ एक लर्निंग नहीं है बल्कि मेरी लाइफ का पर्पस है? वो क्या मोमेंट था या क्या सेट ऑफ इवेंट्स थे जिसने आपको यहाँ लीड किया?
2: तो ऑनेस्टली मुझे आज भी यही लगता है कि प्राणिक हीलिंग को मैंने चूज नहीं किया बल्कि कहीं ना कहीं प्राणिक हीलिंग ने ही मुझे चूज किया है। तो लाइफ का एक ऐसा फेज आया था जब बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन बढ़ता चला जा रहा था, एक एम्प्टीनेस थी। मैं एक ऐसी जर्नी पर थी जहां मैं खुद को समझाने या इमोशनल बैलेंस पर इनर स्ट्रेंथ की तलाश में थी। मैं कोशिश कर रही थी ये सब वापस लौट कर आए। पर जब मैं पहली बार प्राणिक हीलिंग मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होती है बल्कि एनर्जी, इमोशनल और सोल लेवल पर भी होती है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद के अंदर फील किया। मैं पहले से बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करी, इमोशनली स्ट्रॉन्गर फील करी और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मुझे ये लगा कि ये हीलिंग मुझे वापस खुद से कनेक्ट कर रही है। तो शायद मैं भी और किसी की लाइफ में छोटी सी होप या एक छोटी सी लाइट वापस ला सकती हूँ। वही एक मोमेंट था जब मुझे समझ में आया कि ये मेरी लाइफ की लर्निंग नहीं है, ये मेरी लाइफ की एक कॉलिंग है।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जर्नी मैम आपने बताई और बहुत डेफिनेटिव मोमेंट्स होंगे वो जब आपने अपने आप को एक्चुअली एक्सटर्नल की जगह इंटरनल शिफ्ट लिया एंड दैट इज व्हेन आपने टैप किए अपने अंदर के सोर्सेज, आपके अंदर की एनर्जीज। एंड बहुत ही खूबसूरत सफर रहा आपका जैसे आपने बताया। इसी एहसास के साथ, इसी खूबसूरत जवाब के साथ हम सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत, आशाएं, फ्रॉम द फिल्म इकबाल।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक लवीना जी। आपने हमें बताया कि आपकी पर्सनल जर्नी में बहुत सारे इमोशनल फेजेस आए मैम, जो मैं आई लीव इट टू यू इफ यू वांट टू डिस्कस देम स्पेसिफिकली, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम अगर आप बताना चाहें। बट मुझे ये जानना है कि जब ऐसा वक्त किसी के जीवन में आता है तो नेचुरली अंदर से आप टूट जाते हो, अब मतलब शैटर हो जाते हो, तो खुद पर वापस भरोसा करना कितना डिफिकल्ट होता है। और बिकॉज आप एक हीलर हैं, तो आपने क्या मेथड्स अपनाए अपने आप को दोबारा बिल्ड करने के लिए एंड टू बी वेयर यू आर टुडे? वो क्या जर्नी थी मैम?
1: तो प्रेगनेंसी का जो लॉस होता है ना, वो एक वेमेन को पूरी तरीके से तोड़ देता है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल पेन नहीं होता है, आपको बहुत डीप लेवल तक इमोशनल और मेंटल पेन भी देता है। और एक मदर या एक वेमेन ना इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरे लिए वो फेज एक्सट्रीमली पेनफुल रहा और मैं कंप्लीटली इमोशनली शैटर हो गई थी। मैंने बेस्ट डॉक्टर्स, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटने लगा और कुछ एक्सटेंट तक खुद पे भरोसा भी। लेकिन ना उस पेन ने मुझे एक बहुत पावरफुल लेसन दिया, ब्रोकन का मतलब हमेशा फिनिश नहीं होता। थ्रू प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर्स एंड सॉर्ट ऑफ इनर हीलिंग ने मुझे धीरे धीरे समझाया कि खुद से कनेक्ट करे रखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने सबसे पहले अपने पेन को सप्रेस नहीं किया और उसे एक्सेप्ट किया कि ये मेरे साथ हो चुका है, और फिर धीरे धीरे उसे हील करा। मंत्रा वॉज वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। और आज जब मैं अपने दोनों बच्चों को देखती हूँ तो दिल से लगता है कि लाइफ ने मुझे सिर्फ टेस्ट नहीं किया है, लाइफ ने मुझे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो लेसन सिखाया वो ये है कि हमेशा होल्ड अप नहीं करना और लेट गो करने देना चीजों को और इमोशंस को, आपके पास्ट को जाने देना और आगे बढ़ते चले जाना।
0: ट्रूली जितना हम उसे होल्ड करते हैं उतना वो पेन आई थिंक बढ़ता जाता है, एंड हम सेल्फ इन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं एक पॉइंट के बाद, और हम उसे वैल्यू करने लग जाते हैं, रिवेल करने लग जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम समझने की जगह हम उसको एक स्टेट ऑफ अफेयर बना लेते हैं अपने जीवन का। तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पॉइंट आउट किया कि कैसे लेट गो करना एंड सबसे पहले एक्नॉलेज करना अपने ग्रीफ को, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, एंड देन वो जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है उनको पास करना। सो आई वुड लाइक टू टेक द नेम्स ऑफ योर चिल्ड्रन, उनका क्या नाम है, हम उन्हें हमारी पूरी एसएन फैमिली उन्हें हेलो कहना चाहेगी।
1: तो मेरे बेटे का नाम है राम।
0: ओके वाओ।
1: और मेरी बेटी का नाम है राध्या।
0: ओ ब्यूटिफुल नेम। So, राम एंड राध्या, हम आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं एस एन फैमिली की तरफ से, आपको हेलो हाय एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर योर फ्यूचर।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। मैम आगे चलते हैं। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बिकॉज कई बार जैसे हमने डिस्कस किया कि हम पेन को गले लगा लेते हैं, उसके साथ रहना सीख लेते हैं और उसको एक स्टेट ऑफ अफेयर मान लेते हैं, बट इसी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जिन जिन ने आपको शायद हर्ट किया है आपके रास्ते में, जो आपकी जर्नी में लोग आए हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचाए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फॉरगिवनेस से काम करना और लेट गो करना उन लोगों को ब्लेस करके कि ठीक है ये हो गया एंड नाउ वे आर डन एंड डस्टेड विद इट। तो लेट गो करने के लिए ये फॉरगिवनेस वर्क, ये मेडिटेशन, ये जो पूरी जर्नी है जो आपने अपनाई अपनी लाइफ में, वो कैसी थी और कितना इम्पोर्टेंट है सच में किसी को फॉरगिव करना खुद को फ्री करने के लिए?
1: तो फॉरगिवनेस वर्क और मेडिटेशन ने मेरी जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पहले मुझे लगता था कि फॉरगिवनेस का मतलब है सामने वाले को सिंपली माफ कर देना या ये मान लेना जो भी हुआ वो सही था या डेस्टिनी थी। लेकिन धीरे धीरे प्राणिक हीलिंग फॉलो करने के बाद मुझे एक बहुत ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग आई। फॉरगिवनेस जनरली सामने वाले के लिए नहीं होती है, ये हमारे खुद के पीस और हमारे खुद के अटैचमेंट जो हम पास में ग्रजेस रख के बैठे हैं उसके लिए होती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स और अपने क्लाइंट्स को यही एग्जाम्पल से समझाती हूँ से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अभी एक पानी से भरी हुई बॉटल दूं और मैं बोलूं आपको इसे 5 मिनट तक हाथ में पकड़े रखना है, आपको शायद ईजी लगेगा कि ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है। मैं बोलूं अब आप इसे 1 घंटे तक पकड़े रखिए, थोड़ा सा आपके हाथ में पेन चालू होगा। नाउ मैं नेक्स्ट बोलूंगी इसे 2 दिन तक हाथ में इसी तरीके से पकड़े रखिए, टू एन एक्सटेंट आपका हाथ इतना स्टिफ हो जाएगा कि आप उसे मूव भी नहीं कर पाओगे। अब चीज क्या है, बॉटल भी सेम है, उसके अंदर जो पानी है वो भी सेम है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग दैट बॉटल वो बढ़ गया है जो आपको अब हर्ट दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने पास्ट को, अपने एंगर या रिसेंटमेंट को, किसी ने कुछ कह दिया उसे होल्ड अप करके अपने अंदर रखे जा रहे होते हैं, क्या वो पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहा है जो आप अपने मन में ग्रज लेके बैठे? तो हम जितना अंदर होल्ड करके रखते हैं उतना ही हम इमोशनली स्टक हो जाते हैं। हम फिजिकली तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन समहाउ हमने अपने लेसन नहीं लर्न किए हैं और हम उसी पर्सन से आज भी अटैच्ड हैं। एंड आप अगर गौर करेंगे तो लाइफ में आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो सेम चीज आपको वापस सिखाने आए। तो मेडिटेशन ने मुझे रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सिखाया, थोड़ी देर शांत बैठ के पूरी पिक्चर को देखना समझाया, और फॉरगिवनेस ने मुझे बहुत डीप लेवल तक लेट गो करना सिखाया ताकि मैं खुद को अंदर से हील कर सकूं।
0: बहुत ही,
1: और जब आप जेन्युइनली सिंसियरली फॉरगिव करना स्टार्ट करते हो तो एक अंदर जो हैवीनेस है वो आप धीरे धीरे डिसॉल्व करते हो, और ये ही आपकी ट्रू फ्रीडम है जो आपको खुद से बिल्कुल फ्री कर देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आपने हमें बताया। जब आप कह रहे थे तो मैं इमेजिन कर रही थी पैरेलली कि वो कैसा होगा वो फीलिंग, कि सच में कितनी स्टिफनेस आ जाएगी, और वो स्टिफनेस सिर्फ एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर नहीं आपकी पूरी पर्सनालिटी में आ जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया। अब प्राणिक हीलिंग के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज हमारे लिसनर्स जो हैं वो बहुत ले पीपल हैं जिन्होंने शायद नहीं जानते कि प्राणिक हीलिंग एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो अगर कुछ बेसिक्स अगर आप बता सके प्राणिक हीलिंग के बारे में मैम।
1: तो प्राणिक हीलिंग एक नो टच थेरेपी है, ये मास्टर चुआ ने दी है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ,
0: मास्टर आई मिस दैट,
1: मास्टर चुआ कॉक्सी,
0: ओके,
1: ही वाज फ्रॉम फिलिपिन, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टडी करी और हम जैसे नॉर्मल लोगों को मोडालिटी दी है जिससे बोलते हैं प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, 1 पार्ट इज हीलिंग एंड अदर पार्ट इज मेडिटेशन।
0: राइट,
1: तो आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द सीनियर्स टेलिंग इन द क्लास, जब उन्होंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन दिया था
0: जी,
1: बहुत ब्यूटिफुल मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है 20 मिनट का। तो जो मठों में लामा वगैरह होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, उन्होंने काफी आर्ग्यूमेंट किया था कि आपने 20 मिनट में वो दे दिया जो हम शायद 20 साल की तपस्या में फील कर पाते हैं।
0: राइट,
1: तो ये जो पूरी मोडालिटी है ये चक्रा बेस्ड और एनर्जी बेस्ड मोडालिटी है। वी डू नॉट टच आवर क्लाइंट, हम इसे डिस्टेंसली करते हैं और आपके चक्रा की जो है उसे क्लेंस और एनर्जाइज करने पे फोकस करते हैं, इसीलिए ये और मोडालिटी से पूरी तरीके से अलग है।
0: राइट, थैंक यू सो मच मैम हमें बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे मैंने कहा ले पर्सन हैं और वो जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली प्राणिक हीलिंग किस तरह से काम करती है। जैसे आपने बताया चक्रास को हील करती है, विदाउट टच हील करती है, और मेडिटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसका। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। हम हमारे अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे। हमारा आज का अगला गीत फिर से उड़ चला फ्रॉम द फिल्म रॉकस्टार।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, इंस्पिरेशन से भरा। आगे चलते हैं लवीना जी, आपने बताया कि प्राणिक हीलिंग आपके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, और मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि कोई भी इंसान जो एनर्जी हीलिंग में है, इस तरह की प्रैक्टिसेस में है, वो आई थिंक उसके लिए ये सच में सिर्फ एक प्रोफेशन से बहुत बढ़ के होता है। ये ह्यूमैनिटी को टच करने जैसा होता है, सेवा जैसा होता है, जैसे आपने बताया। तो आप जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है, जब आप किसी इंसान का स्ट्रेस, उनका फियर, उनका इमोशनल पेन हील कर पाते हैं, उसके बाद वो जो फील करते हैं, जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आपको क्या फीलिंग देते हैं? और इसी के साथ अगर आप कोई एक क्लाइंट एक्सपीरियंस या कोई ऐसा मूविंग एक्सपीरियंस जो आपको आज भी याद है, वो अगर साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ।
1: बिल्कुल सही है, प्राणिक हीलिंग मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये बहुत डीप डाउन मेरे हार्ट से कनेक्टेड है और मैं इसे एक सेवा के जैसे भी देखती हूँ। तो जब कोई पर्सन स्ट्रेस, फियर, इमोशनल पेन या कंफ्यूजन के साथ

0: मेरे साथ मेरे पास आता है या मेरी क्लास में बैठता है, और क्लास के बाद जब वो मुझसे फीडबैक देता है और कहता है कि लवीना जी बहुत हल्का फील हो रहा है, या बहुत टाइम बाद एक शांति सी महसूस हो रही है, तो जनरली मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं अपनी खुशी जाहिर कर सकूं, क्योंकि उस मोमेंट पर आप सिर्फ एक इंसान को हील नहीं करते हो, आप देखते हो कि उसके अंदर वापस जीवन जीने की एक होप वापस आ रही है, जो सिर्फ टेम्पररी नहीं है, जो वो क्लास के दौरान सीख रहा है और एक स्पिरिचुअल टूल अपने साथ लेके जा रहा है जो
1: बिल्कुल
0: आगे लाइफ में उसे हर फेज पर सपोर्ट करेगी। मास्टर चोकोक्सकी की टीचिंग्स ने मुझे ये समझाया कि हीलिंग सिर्फ टेक्निक नहीं होती है, हीलिंग में कंपैशन, आपका इंटेंशन और जेन्युइन सर्विस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। ऑनेस्टली कभी कभी मैं जब अपने बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में सोचती हूँ और मैं ये रियलाइज करती हूँ कि लाखों लोगों के बीच में गुरु ने आपको ट्रेनर बनाया और उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करने का एक मौका दिया, तो मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ कि आप किसी की लाइफ को टच करके उसे हील करना सिखाते हो, उसे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाते हो। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अगर किसी का पूरी तरीके से पेन नहीं भी हटा पा रहे हो तो उस अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला पा रहे हो। तो मैं मेरे बच्चों का ही एग्जाम्पल दूंगी, तो मेरा जो बेटा है ही वॉज बर्न्ड 2nd डिग्री, तो मेरी पूरी फैमिली प्राणिक हीलर है एंड फाइव, मतलब हम लोग को यही था कि वेदर ही विल सर्वाइव और नॉट, ही वॉज जस्ट 9 मंथ्स ओल्ड बेबी एंड उसका पूरा बैक चल गया था। राउंड द क्लॉक उसकी हीलिंग हुई, 5 डेज ही वॉज एडमिटेड एंड डॉक्टर्स वर ऑल्सो शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, मतलब इतनी जल्दी हीलिंग कैसे हो गई। थैंक्स टू द गुरु एंड थैंक्स टू यूनिवर्स एंड माई कम्प्लीट फैमिली जिन्होंने उसको हील किया, क्योंकि उस वक्त मैं इस कंडीशन में नहीं थी, बच्चे के साथ थी। वो एक फेज ऐसा था तब मुझे लगा कि जितने भी बर्न केसेस हैं मुझे हॉस्पिटल जाके लोगों को हील करना चाहिए, तो जो आप देते हो वो आपके पास पलट के आता है। मैंने कई लोगों की फ्री हीलिंग करी है बर्न केसेस में, वो डर एक कर्मा मेरे पास रिपीट होके आया।
1: जी, आई कैन इमेजिन हाउ वो फेस किस तरह से आपको झंझोर के रख देता होगा. आई होप योर सन इज ऑल फाइन नाउ एंड
0: ही इज परफेक्टली वेरी नॉटी नाउ।
1: गुड गुड गुड. वी आर सेंडिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर हिम इवन नाउ एज वी स्पीक. एंड आपने सच कहा कि अगर कंपैशन नहीं है, डिवाइन आपका इंटेंशन नहीं है, तो ये काम आप नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं आपको बियॉन्ड अपने प्रोफेशनल डोमेन से निकल के बहुत पर्सनल होना पड़ेगा टू डू सच वर्क. और बहुत खूबसूरत काम आप कर रहे हैं मैम, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. आगे चलते हैं और आपका जो वेंचर है, आपका जो बेबी है, कुशा डिवाइन होम, आपका एक और बेबी है एक्चुअली. आई थिंक यू हैव 3 किड्स जो आपकी हीलिंग जर्नी का एक एक्सटेंशन है, जहाँ पे आप क्रिस्टल्स, अतर और स्पिरिचुअल वेलनेस के प्रोडक्ट्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स की तरह नहीं देखते, बल्कि एक एनर्जेटिक सपोर्ट की तरह देखते हैं. तो अगर आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा बता सकें कि ये किस तरह से काम करता है, एनर्जी और इंटेंशन का क्या कनेक्शन है, और ये जो आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे कुशा डिवाइन होम में, ये किस किस तरह से कहाँ कहाँ तक हीलिंग कर सकते हैं, क्या इनका पर्पस है, कैसे आप इनको डिवाइस करते हैं?
0: कुशा डिवाइन मेरे लिए मेरी हीलिंग जर्नी का एक नेचुरल एक्सटेंशन है। मैं क्रिस्टल और अतर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देखती हूँ, मेरे लिए ये एक एनर्जेटिक सपोर्ट टूल है। जैसे हर क्रिस्टल की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अतर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है इंटेंशन। एनर्जी हमेशा आपका इंटेंशन फॉलो करती है, जो आप सोचते हो वो होता है, वो ही आप अट्रैक्ट करते हो। इसलिए कुशा डिवाइन में हम रेडीमेड क्रिस्टल्स रैंडमली डिस्पैच नहीं करते, हम पहले अपने क्लाइंट का पूरा इंटरव्यू लेते हैं, उसका इमोशनल स्टेट, वो क्यों हमसे क्रिस्टल बाय करना चाह रहा है, उसका क्या एनर्जी पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, एक न्यूमरोलॉजिक वैदिक चार्ट क्रिएट करते हैं, करेंटली उसकी कौन सी दशा या अंतर दशा चल रही है,
1: जी
0: समझने की पूरी कोशिश करते हैं एंड उसके बाद उसे कोई भी क्रिस्टल सजेस्ट किया जाता है। जैसे ही वो अपना चूज कर लेता है क्रिस्टल जो भी उसे बाय करना है, हम उस क्रिस्टल को फिजिकली क्लेंस करते हैं ताकि जो भी पहले की एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टल है तो वो अच्छी बुरी दोनों एनर्जीज एब्जॉर्ब करता है, तो जितनी भी पहले की नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव कर सके। फिर उस क्रिस्टल को हम स्पेसिफिकली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 5 days वी चार्ज इट विथ स्पेसिफिक मंत्र प्राण के लिए होते हैं। हम उसे खुद पर्सनली चार्ज करते हैं ताकि उस पर्सन को अपनी लाइफ में कोई भी इमोशनल फाइनेंशियल या फिर रिलेशनशिप इश्यू आ रहा है वो उससे बहुत इजीली डील कर सके। तो मेरे लिए रिचार्जिंग एक रिचुअल नहीं है, ये एक एनर्जी प्रोसेस है। मैं खुद को बहुत प्राउडली अलग इसलिए कहती हूँ क्योंकि वी जस्ट डोंट सेल। हम उसके बाद आपने क्रिस्टल पहन लिया, हम उसे 2 दिन बाद फिर सेल्फ रिचार्जिंग करने का भी तरीका बताते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि उसकी एनर्जी, अगर अगर हम फोन आज बैटरी से चार्ज करेंगे कितनी लाइफ है उसकी, 2 दिन, तीसरे दिन हमें फिर से चार्ज तो करना ही पड़ेगा ना। ये चीज कोई नहीं बताता,
1: राइट।
0: तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने क्रिस्टल्स को रेगुलरली चार्ज करें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिस्टल्स मैजिक शॉर्टकट नहीं है, आपकी हीलिंग और आपकी ग्रोथ हमेशा आपकी इनर वर्क से आती है, लेकिन राइट क्रिस्टल, राइट गाइडेंस और राइट इंटेंशन से अगर वो चार्ज है तो आपकी ग्रोथ बहुत इजीली हो जाएगी। जितने भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो एकदम साइड होके चली जाएगी।
1: कोई एक दो अगर क्रिस्टल्स के बारे में हमें बता सके या अतर्स के बारे में, आपके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके मैम, जो आपको लगता है कि
0: रोज क्वार्ट्ज बेचती हूँ या फिर हम सेल करते हैं सिट्रीन। तो रोज क्वार्ट्ज बेसिकली आपका शुक्र प्लैनेट फ्राइडे को एक्टिवेट करता है। पीपल हु डू नॉट हैव सेल्फ लव या फिर उनकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा आ जाता है टिकता नहीं है, या खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो मैं उनको रोज क्वार्ट्ज देती हूँ। या फिर हस्बैंड वाइफ में या माँ बेटी में या इन लॉज में झगड़ा चल रहा है, रिलेशनशिप कोई भी टाइप का रिलेशनशिप है या फेसिंग स्ट्रगल इन योर रिलेशनशिप, आई जनरली सजेस्ट देम रोज क्वार्ट्ज, या तो आप पहन ले या फिर उसका स्टोन अपने रूम में या अपने ऑफिस में रख लीजिए। वही अट्रैक्ट करेंगे धीरे धीरे लोगों को आपकी वैल्यू, आपके टाइम की और आपकी प्रेजेंस की, रियलाइज होने लग जाएगी।
1: राइट राइट। एंड सिट्रीन आपने बताया, सिट्रीन का पर्पस,
0: सिट्रीन बेसिकली आपके जुपिटर प्लैनेट को एक्टिवेट करता है, गुरु को।
1: ओके, तो ये ऑरेंज कलर का होता है शायद,
0: इट्स येलोइश, वेरी पेल येलो।
1: ओके ओके,
0: वेरी पेल येलो
1: जी।
0: तो यूजुअली ये जो लोग आफ्टर मैरिज जिनको प्रॉब्लम आती है, पैसा घर में बहुत है लेकिन मेरे लिए नहीं है, बाहर स्पेंड कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दे रहे, ठीक है, मेरे पास ज्ञान बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं इस ज्ञान को कैसे लोगों तक पहुंचा सकूं, मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ लेकिन जहाँ विजडम वाले मुझे डिसीजन लेना, आई एम ऑलवेज मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि गुरु इज फॉर योर एजुकेशन और डिलीवरिंग प्रॉपरली। तो उस केस में मैं ये रिकमेंड करती हूँ, तो आप जो अर्न करते हो वो आपके पास टिकता भी है और आता भी है, आप सडनली बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हो किसी भी नॉलेज के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राणिक हीलिंग कर रहे हो तो आप उसके आगे के स्टेजेस पढ़ने लग जाओगे, एनर्जी वर्ल्ड को बहुत डीपली समझने लग जाओगे। तो हर इंसान का अलग अलग कंसर्न होता है, उस हिसाब से इसे चार्ज किया जाता है।
1: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम, बहुत सारी नॉलेज आज शायद हम साझा कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के साथ। और जैसे कि आपने सुना कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, आपका वीनस वीक है, तो रोज क्वार्ट्ज पहने, ये पिंकिश कलर का स्टोन होता है, और कुशा डिवाइन सेंटर को प्लीज यू नो कॉन्टेक्ट करें और जाने कि आपका कौन सा प्लैनेट वीक है और किस स्टोन की, किस क्रिस्टल की या किस प्रोडक्ट की आपको जरूरत है अपनी वेलनेस की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए। तो आगे चलते हैं मैम, हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, तू फिजा है, फ्रॉम द फिल्म फिजा।

0: नवीना जी, आजकल बहुत सारे लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। हम जिन ओवरवेलमिंग टाइम्स में रह रहे हैं, जिस तरह का हमारे आसपास फिजिकल जो हमारे एनवायरनमेंट्स में चेंज है, जो हमारी लाइफस्टाइल्स में चेंज है, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, बहुत नॉर्मल है एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और ये सब होना। तो आज जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, जो इस वक्त मेंटली हैवी फील कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई एक बेसिक सी एडवाइस देना चाहें कि वो ये कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज अगर ये प्रैक्टिस अपना लें, तो शायद कुछ हैवीनेस, थोड़ी सी चीजें बेटर हो सकती हैं और आप उसकी तरफ एक पहला कदम उठा सकते हैं। वो अगर कुछ अगर आप साझा करना चाहें तो इस डायरेक्शन
1: जो
0: में।
1: भी इस वक्त मेंटली या इमोशनली फील कर रहे हैं, मैं बस उन्हें इतना ही कहना चाहती हूँ, प्लीज अपने आप को वीक मत समझिए। ये भी जिंदगी का एक दौर है और ये भी निकल जाएगा। आजकल हम सब बहुत कुछ इमोशनली स्ट्रेस कैरी करते चलते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर, ओवरथिंकिंग, एक्सपेक्टेशन आ जाती है और धीरे धीरे माइंड और एनर्जी दोनों ही ड्रेन हो जाती है। कभी कभी आप वीक नहीं होते, आप सिर्फ इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हो। तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है, आप रोज खुद को 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। एक शांति की जगह में 5 मिनट खुद के साथ बैठिए और आंखें बंद करके जीभ को तालू पे लगा के डीप इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। और वाइल एक्सहेलिंग, जब आप सांस छोड़ते हैं, आप विजुअलाइज करिए कि जितना भी स्ट्रेस है, जो भी थॉट आपको परेशान करना है या जो भी हैवीनेस आप फील कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम से रिलीज हो रही है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि सुबह नहाते वक्त या जिस भी वक्त आप नहाते हैं, थोड़ा सा पानी में बाल्टी में नमक डाल सकते हैं या फिर नहाने के बाद पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं एंड जस्ट नॉर्मली पानी से उसे साफ करते हैं। आपने ध्यान होगा, बचपन में मम्मियां हमारी नमक से नजर उतारती थी। तो नमक क्या होता है, एक नेचुरल क्लेंजिंग होती है नमक में, जो हमारे ऑरा में से कोई भी डर्टी एनर्जी होती है, कोई भी नजर होती है, उसे नेचुरली क्लीन कर देता है। और सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो हर वक्त स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है और हर चीज अपने सर पे लेने की भी जरूरत नहीं है। लाइफ में थोड़ा सा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थोड़ी देर नेचर के साथ, अपने साथ वक्त बिताइए और उस ऊपर वाले पर और उसके प्रोसेस पे भरोसा रखिए। कभी कभी लाइफ के टफेस्ट फेज हमें सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं और
0: बिल्कुल
1: जब हम वो लेसन सीख जाते हैं, वो प्रॉब्लम याद भी नहीं होता है भी या नहीं। और जब तक हम नहीं सीखते हैं, सेम प्रॉब्लम लेकिन डिफरेंट पर्सन रिपीट चली जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेसन।
0: राइट राइट बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लेसन्स लर्न करें। और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करी कि हर बार वो बर्डन कैरी करना जरूरी नहीं है। कई बार आप वो बर्डन उतार भी सकते हैं, उसको थोड़ी देर साइड में रख भी सकते हैं और किसी और के साथ उस बर्डन को शेयर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो बोझा लेके अपने जीवन भर

0: आपके लिए ये जो पूरी जर्नी थी, आपकी जो पूरी हीलिंग जर्नी थी, आपका ये जो यू नो दिस होल पाथ जो आपने तय किया अपने जीवन में, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें एक लाइन में या एक फलसफे में, तो वो क्या है? और आपके आपके जीवन की, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही, अगर आप कुछ बताना चाहें?
1: मैंने अपने स्ट्रगल्स को हमेशा डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा है और उन्हें स्ट्रेंथ में बदला है और अपनी हीलिंग को सेवा बना ली है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल, रुकावटें या जो टेस्ट आते हैं वो हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ बड़ा या बेहतर दिखाने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। यू जस्ट नीड टू क्रैश द प्रोसेस। मेरे लिए मेरे को स्ट्रगल्स ने बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाया, लेकिन प्राणिक हीलिंग ने और उसकी टीचिंग्स ने मुझे एक डायरेक्शन और एक पर्पस दिया। पहले मुझे लगता था हीलिंग सिर्फ मेरे इमोशन, इनर बैलेंस और कॉन्फिडेंस के लिए होती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि हीलिंग सिर्फ पर्सन तक नहीं रिलेटेड लिमिटेड रहती है, वो आगे तक जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहुत घना पेड़ होता है, आप अगर उसके पास जाएंगे उसका काम ही है छाया देना। आप चाहे उससे कुछ एक्सपेक्ट करें या नहीं करें, वो आपको छाया ही देगा क्योंकि उसके ऑरा में से यही निकलता है। तो जब एक पर्सन एनर्जी लेवल पर हील होता है, कोई चाहे या ना चाहे उसकी फैमिली की एनर्जी चेंज होती ही है। उसके घर का ऑरा, उसके रिलेशनशिप, उसके फाइनेंसेस, घर का माहौल, सब कुछ धीरे धीरे बेटर के लिए शिफ्ट होता है। तो हीलिंग एक पर्सनल जर्नी से शुरू जरूर होती है, लेकिन वो सिर्फ पर्सनल नहीं रहती, वो धीरे धीरे दूसरों तक पहुंचती है। और मेरे लिए हीलिंग का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आप खुद को हील करें और अपनी लाइफ से दूसरों की लाइफ में रोशनी डालें, क्योंकि जो
0: बिल्कुल
1: आप दोगे वो 100 गुना आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शेयर योर लाइट एज फार एंड एज वाइड यू कैन। मैम, आप कंक्लूड करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई आपकी डी स्ट्रेसिंग हॉबीज हैं क्या? आप गाते हैं? क्योंकि हम लोग बेसिकली, हमारा शो, हमारा प्लेटफॉर्म SN रेडियो गानों और गीतों पे बहुत फोकस्ड है, तो अगर आप गीत गुनगुना सकते हैं, अगर आप गाते हैं, तो हमारे लिए अगर एक छोटा सा गीत गुनगुना दें, या कोई फलसफा शेयर कर लें, या कुछ लिखावट आपकी जो आपने कभी लिखा हो वो शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ, जस्ट एज एन एंडिंग नोट।
1: जी बिल्कुल, मैं गाती हूँ।
0: जी,
1: मैं पिया तोते आपके साथ शेयर करना
0: ओ
1: चाहूँगी।
0: वाओ वाओ
1: क्या
0: वाओ,
1: तेरी आवाज
0: नहीं नहीं, आई एम श्योर यू हैव अ
1: निकले?
0: ब्यूटिफुल वॉइस। यस
1: ओके, शैल आई स्टार्ट?
0: जी।

0: मन मन पिया तो लेना ना धीरे।
1: बहुत बहुत खूबसूरत मैम, आई एम श्योर आपको लर्न करना चाहिए। आई थिंक इफ यू आर नॉट ऑलरेडी अ लर्न सिंगर, यू शुड गो अहेड एंड लर्न सिंगिंग, बिकॉज यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस। और ये इतना डिफिकल्ट गाना है, तो बहुत ही खूबसूरती से आपने गाया है। ऑलरेडी आई थिंक आई गॉट सम गूज बम्स। तो
0: थैंक यू सो मच,
1: ब्यूटिफुल सिंगिंग, एंड आई थिंक आपको परस्यू करनी चाहिए सिंगिंग, और फिर आना चाहिए एसएन रेडियो पर अपना एक शो के साथ आज के कलाकार में। तो थैंक यू सो मच लवीना जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी प्यारी, इतनी सहज और इतनी सटीक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे श्रोताओं को आज बहुत फायदे हुए होंगे।

0: एपिसोड से, इस कॉन्वर्जेशन से. एंड आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत आज के जमाने में, आई थिंक आज से ज्यादा इसकी कभी पहले जरूरत नहीं थी, जो जिस जनरेशन में हम अब हैं. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी एसएन फैमिली की तरफ से. तो दोस्तों, हमने जाना कि हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द को खत्म करना नहीं होता, कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है खुद को दोबारा पहचानना. और आज लवीना जी ने हमें यही याद दिलाया कि हर इंसान के अंदर एक रोशनी जरूर होती है, बस कभी कभी उसे जगाने के लिए थोड़ी सी फेथ, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत होती है. चलिए, अगले एपिसोड तक हम खुद के अंदर की हीलिंग को ढूंढते हैं, टैप करते हैं और उससे उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. आप सुन रहे थे अपनी आरजे, अपने तरानों की हमसफर तनुषा को, ओनली ऑन जिंदगी के रंग गीतों के संग एसएन रेडियो पर.
1: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही. कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर. सुनना ना भूलिएगा.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

0: मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
1: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता जी की खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ कहीं का, उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानों जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसे हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया। What?

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती और आप सुन रहे हैं SN रेडियोस और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर मेरा और आपका मनपसंद प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, शायरी सिर्फ कागजों पर उतरे हुए लफ्ज नहीं होते, बल्कि वो जज्बात हैं जो हम अक्सर कह नहीं पाते। कभी जिंदगी सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है, तो कभी खामोशी हमारी हमसफर बन जाती है। आज की शाम इन सवालों और खामोश एहसासों के नाम करते हैं। तो चलिए दिल की धड़कनों को थोड़ा सा थम कर चलने को कहते हैं और शुरू करते हैं आज का ये हसीन सिलसिला। आज के प्रोग्राम की खसूसी बात यह है कि आज के प्रोग्राम में हम एक बिल्कुल ही नई किस्म की गुलुकारों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें सूफिया कलाम भी है। तो आप कह सकते हैं ये फ्यूजन गजल्स हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं। शेर हाजिर है। कभी उदास आंखों में रहता है वो चेहरा रात दिन, उस चेहरे पे नूर हो ये जरूरी तो नहीं। सफर में साथ चलते हैं यहाँ कितने ही लोग, हर एक हम सफर ही हो ये जरूरी तो नहीं। या फिर फिजा में रंग बिखरे हैं तुम्हारी याद के, फिजा में रंग बिखरे हैं तुम्हारी याद के, हर एक रंग में तू ही हो जरूरी तो नहीं। कभी खामोशियां भी तो बहुत कुछ कहती हैं, हर एक बात लफ्जों में हो जरूरी तो नहीं। तो आइए दोस्तों ये खूबसूरत सी गजल सुनते हैं जिसका मिसरा है, हर एक ख्वाब मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं, मोहब्बत में सभी खुश हों जरूरी तो नहीं। मुलाहिज़ा फरमाएं।

बात लब पर आई मगर रुक गई थी। कोई हया से निगाहें झुक सी गई थी। वो अदा से दुपट्टे को मुंह में दबाना आफते जान है उनका मुस्कुराना। सर्द रातों में चमकते हुए ख्वाब आते हैं, सर्द रातों में चमकते हुए ख्वाब आते हैं। उनकी यादों के मौसम बेहिसाब आते हैं और उनका सितम ढा के फिर खुद ही रूठ जाना। आफते जान है वो उनका मुस्कुराना। लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल सुनिए और बह जाइए प्यार के डूबे हुए एहसास में।

0: दोस्तों, ये रूठना मनाना तो बस इश्क की अदा है, दोनों की ही इसमें जीत है, ऐसी ये सजा है। आपने कभी उस प्यार करने वाले आशिक की लड़ाई सुनी, जहां उसका उलाहना और शिकायतें सिर्फ इसलिए हैं कि उसको और भी प्यार किया जाए। प्यार और ज्यादा प्यार पाने की जद्दोजहद में वो अपने महबूब से हक से शिकायत करता है, जिद करता है और कहता है, पास अपने बिठा लीजिए, हाथ मेरा थाम लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा, अब रूह में समा लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। लफ्ज़ शिकायत आज मेरे होंठों पे धरे हैं, लफ्ज़ शिकायत आज मेरे होंठों पे धरे हैं, पर आपकी नजरों में तो पैमाने भरे हैं, तो फिर नजरों से पिला दीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। तरके वफा की बातें फक्त कहने की बातें, तरके वफा की बातें फक्त कहने की बातें, बिना आपकी कटती नहीं ये तन्हा रातें। गजल सुनिए, आंखों से मना लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा, होठों से चुरा लीजिए, ऐसे नहीं मानूंगा। शौक फरमाए।
1: लफ्जों का आईना।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आइए जानकारी को बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: जानते हैं कि खेत की तैयारी से लेकर किस्मों के चुनाव से जुड़ी हुई कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है।
3: जैसा कि आप जानते हैं कि कपास हमारे देश की एक प्रमुख रेते वाली फसल है। कपास की खेती, हालांकि हमारे देश में जो दुनिया में खेती होती है उसके लगभग एक तिहाई क्षेत्र में होती है, लेकिन जो कपास का उत्पादन है वो दुनिया का लगभग 1/5 है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ कपास की औसत उपज जो लगभग 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, दुनिया के दूसरे देश जैसे ब्राजील, वहाँ की लगभग 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चाइना की लगभग 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा अमेरिका की लगभग 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, उनकी अपेक्षा बहुत कम है। अगर हम विश्व के कपास के औसत उपज को देखें तो उसकी अपेक्षा जो लगभग 700-800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है उससे भी काफ़ी कम है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ किसान भाई, अधिकतर किसान भाई उन्नत जो कृषि तकनीक हैं उनका प्रयोग नहीं कर रहे, और उन्नत कृषि तकनीकों का प्रयोग न करने के कारण जो कपास की औसत उपज बहुत ही कम है। हालांकि कपास का देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कपास के द्वारा देश के लगभग 6 मिलियन किसान उनको इससे जुड़े हुए हैं और इसके अतिरिक्त 60 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है जो कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कपास की खेती के लिए जो कीटनाशी, उर्वरक तथा उन्नत बीज उत्पादन करने में लगे हुए हैं और उससे जो ट्रांजैक्शन होता है उससे भी लोगों को काफ़ी रोजगार मिलता है। तो कपास की खेती हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आवश्यकता है कि इसकी अधिक उपज, हालांकि इस उपज को हम दोगुना तक यानी कि 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक आसानी से बढ़ा सकते हैं यदि हम कपास की खेती के लिए सभी उन्नत जो तकनीक हैं उनको प्रयोग करें। अब सवाल उठता है कि कपास की खेती उन्नत तकनीकों को प्रयोग करते हुए कैसे करें। कपास के लिए सबसे प्रमुख जो बात है वो है फर्स्ट पे उन्नतशील किस्में। कपास की मुख्य रूप से 3 प्रकार की किस्में जो उपलब्ध हैं, एक तो देसी कपास की किस्म, दूसरी बीटी कॉटन किस्म और तीसरी अमेरिकन कॉटन किस्म। ये तीनों किस्मों की कई प्रकार की उन्नत किस्में हैं। जैसे देसी किस्म में RDCH9 ये बड़ी अच्छी किस्म है, LD 394 बहुत अच्छी किस्म है। इनकी उपज लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर तक हो जाती है तथा इनकी जो गेनिंग परसेंटेज है यानी कि जो कपास से जो रुई की प्रतिशतता है वह 34 से 35% तक है तथा ये किस्में 160 से 170 दिनों कंप्लीट हो जाती हैं तथा किसान भाई इनके बाद कपास की खेती के बाद उस खेत में गेहूं की फसल भी आसानी से ले सकते हैं। इस प्रकार अनेक बीटी कॉटन किस्म हैं जो बड़ी अच्छी किस्म हैं और जिनमें जो कपास में जो सबसे प्रमुख जो समस्या होती है पिंक बॉलवर्म की, उसकी उन किस्मों में समस्या बहुत ही कम होती है। यदि किसान भाई बीटी कॉटन किस्मों का प्रयोग करें तो उससे जो पिंक बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म और दूसरे कीड़े एवं बीमारियों से जो फसल में नुकसान होता है उसको भी काफ़ी कम किया जा सकता है। RCH 3

किस्म है, इनके द्वारा किसान भाई कपास की खेती करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। RCH 317 अंकुर 651 ये बड़ी अच्छी किस्म है, इनके द्वारा किसान भाई कपास की अच्छी पैदावार यानी कि 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर तक प्राप्त कर सकते हैं। इनकी गिनिंग परसेंटेज 34 से 35% तक है तथा ये सभी किस्में 160 से 170 दिन में पक जाती हैं और इन फसलों के बाद किसान भाई गेहूं की फसल भी आसानी से ले सकते हैं। तो आवश्यकता है कि किसान भाई जब अपने खेत में किस्मों का चयन करें तो उन्नत किस्मों का ही चयन करें, क्योंकि इन किस्मों में जो कीड़ों से फसल को नुकसान होता है उसको काफ़ी कम किया जा सकता है, पैदावार अच्छी होती है और इन किस्मों के बोने के बाद में दूसरी फसल जैसे गेहूं रबी सीजन में उसको भी आसानी से लिया जा सकता है। कपास के लिए भूमि का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि भूमि अच्छी प्रकार की जिसमें कपास की खेती अच्छी प्रकार से हो सके, भूमि उस भूमि की pH 6 से 8 उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तथा पानी धारण करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, वह भूमि जो उसमें फर्टिलिटी जो उसकी उर्वरता है उस वह अच्छी होनी चाहिए तथा भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो भूमि का चयन करते समय किसान भाइयों को ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कपास की बुआई का समय चल रहा है तथा अधिकतर क्षेत्रों में जहां किसान भाई गेहूं की फसल काटने के बाद कपास की बुआई प्रारंभ कर रहे हैं तो गेहूं के खेत की अच्छी प्रकार से जुताई कर लें। एक जुताई डिस्क हैरो से करें, उसके बाद 2-3 जुताई हैरो और कल्टीवेटर से खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करके उसमें अगर संभव हो सके तो किसान भाई 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई हो उसको खेत में अच्छी प्रकार से मिला दें तथा उसके बाद ही बुवाई करें। ध्यान रहे कि जो गोबर की खाद है वह अच्छी प्रकार से सड़ी होनी चाहिए, यदि गोबर की खाद कच्ची होगी तो उससे अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे दीमक का प्रकोप अधिक होता है तथा उसमें खरपतवारों की समस्या अधिक होती है। कपास के लिए बीज की मात्रा का उचित मात्रा में बीज को प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो देसी किस्म है उनका बीज प्राय 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा जो हाइब्रिड किस्म है या बीटी किस्म है उनका बीज 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। जब हम कपास की बुआई करते हैं तो उसमें पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

0: जो देसी किस्म है उनमें पौधे से पौधे की दूरी प्राय 60 से 30 सेंटीमीटर, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि बीटी कॉटन में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस प्रकार यदि हम एक हेक्टेयर में कुल मिला के उचित पौधों की संख्या रखें तो पैदावार अच्छी मिलेगी। खाद और उर्वरक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बुवाई के समय किसान भाई अगर उपलब्ध है तो 10 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद दे दें। उसके बाद खेत में लगभग 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर, इसकी मात्रा कपास के लिए पर्याप्त होती है। जितनी नाइट्रोजन की मात्रा दे रहे हैं उसकी लगभग आधी मात्रा बुवाई के समय देते हैं तथा फास्फोरस व पोटेशियम की पूरी मात्रा ये सभी बुवाई के समय दे देनी चाहिए। फास को कुल पानी की मात्रा लगभग 800 से 1200 मिलीमीटर की जरूरत होती है। तो इस प्रकार अगर किसान भाई उचित मात्रा में खाद दें, उचित मात्रा में बीज प्रयोग करें तथा बीज को उपचारित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम बीज का उपचार करेंगे तो भूमि जनित काफ़ी बीमारियां हैं जिससे कपास की फसल को नुकसान होता है।
1: ये आवाज़ है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
0: तो कपास के बीज को उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी की 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त बीज को 2 मिलीग्राम क्लोरोपाइरीफॉस से भी उपचारित करना चाहिए, जिससे कि भूमि जनित जो कीड़े हैं उनकी कम से कम समस्या लगे तथा कपास में खरपतवारों का भी बहुत प्रकोप होता है। तो फसल की जब हम बुवाई करते हैं तो उसके बुवाई के 2 दिन पश्चात तक कपास की फसल में पेंडीमेथिलीन नामक खरपतवार नाशी की जो बाजार में उपलब्ध मात्रा है उसकी 3.3 लीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार से समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। लेकिन यह खरपतवार नाशी फसल उगने से पहले ही छिड़काव करना चाहिए, यानी कि जब फसल की बुवाई करें तो उसके 2 दिन पश्चात तक छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद यदि खरपतवार आ जाते हैं तो उन पे इसका असर नहीं होगा। इसके बाद फिर खेत में 2 बार अच्छी प्रकार से गुड़ाई कर दें और उसमें मिट्टी चढ़ा दें तो खरपतवारों की समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से किसान भाई अगर इन सभी बातों का ध्यान रखें तो कपास की खेती से अच्छी पैदावार ले सकते हैं तथा अगर अच्छी पैदावार होगी तो किसान भाइयों की आमदनी भी अधिक होगी तथा उनको उसके साथ साथ लाभ भी अधिक प्राप्त होगा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने जाना, कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है, कौन सा उपयुक्त कपास होना चाहिए, बीजों का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और भी इससे जुड़ी हुई जानकारियों को हम जानेंगे। उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भेली गीत को।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज खेती किसानी कार्यक्रम।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कपास से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: सफेद सोना। खेती में यदि किसी फसल की उपज को ये उपाधि प्राप्त है तो वो है रुई। ये कपास की खेती से प्राप्त होने वाली उपज है। कपास, जिसकी खेती हमारी परंपराओं में है। हम आदिकाल से कपास की खेती करते आ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि खेती यहाँ का आदि व्यवसाय है। कपास भारत की खेती की पहचान है, क्योंकि कपास की खेती के प्रमाण ऋग वैदिक काल से मिलते हैं। इतना ही नहीं, भारत को ये गौरव भी प्राप्त है कि इसने कपास की खेती को दुनिया भर में प्रचलित किया। अन्य प्रमुख देश जो आज कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, उनके यहाँ भी कपास की खेती भारत से पहुँची। कपास केवल कृषि व्यवसाय ही नहीं, बल्कि ये एक कृषि उद्योग भी है। कपास का उत्पाद रुई कपड़ा उद्योग का मुख्य आधार है। इस तरह कपास किसानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर

0: जैसा कि आपने बताया गया और हम देख भी रहे हैं कि मौसम बड़ा अनोखा है, कहीं कम बरसात है, कहीं ज़्यादा बरसात है, तो हमें इसमें पानी का उचित प्रबंध करना पड़ेगा। अगर कम पानी है तो हमें उसको जो है जो विशेष दो अवस्थाएं हमारी, जैसे फूल का बनना या जो है टिंडा या बॉल का बनना, उस पर हमें ये उचित ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय ज़मीन में पौधे के लिए प्रचुर मात्रा में नमी होनी आवश्यक है। और इसके लिए हम यह है खरपतवार निकालें या जल का जो है सही समय पर प्रयोग करें। चूसने वाले जो कीड़े हैं, पत्तियों को चूसते हैं या तने में चूसते हैं, बॉलवर्म में चूसते हैं, या उनके एपिकल बड होती है उस पर चूसते हैं और पौधे को काफ़ी ये जो है रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी वृद्धि कम कर देते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं, तो उसकी जो है पैदावार में काफ़ी नुकसान होता है। इसमें आपको जो है कीड़े हैं वो जो है बड़ा एक इसमें शेड्यूल काम में लेना पड़ता है, उसमें 4 या 5 का एक तरह का शेड्यूल है, किसान उसको उस शेड्यूल को जो है एक 15 से 20 या महीने के बीच में उस शेड्यूल को जो है अपनाए, तभी इस तरह की जो है कीड़ों का रोकथाम किया जा सकता है। जैसे प्रथम जो है शेड्यूल है वो हम जो है जून से जुलाई के बीच में करेंगे, दूसरा जुलाई से और प्रथम जुलाई से प्रथम सप्ताह से लेके और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक जो है करेंगे, तीसरा हम सितंबर में और पीछे मिड सितंबर से लेके अक्टूबर और अक्टूबर के महीने में। इस तरह से 5 शेड्यूल हैं। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि कोई दवाई का दोबारा हम जिस दवाई को जिस रसायन को काम में ले रहे हैं छिड़काव के लिए उसका दूसरा जो है किसी तरह से पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें जब ये ध्यान रखे आदमी का आर्थिक रूप से नुकसान जो है फसल को हो रहा है, अब ज़्यादा जिस तरह से आक्रमण है कीट का तो तभी करें, कम आर्थिक रूप से भी ये भी देखें कि आर्थिक रूप से मुनाफा हमें हो रहा है उस हिसाब से ही उसका जो है स्प्रे करें। अब इनमें यहाँ आने वाला जैसे ये कीड़ा है सफ़ेद मक्खी है इस समय, या आपका जो है सूढ़ी का वर्म है, हेयर कैटरपिलर है, इस तरह के कीड़े इस समय आम है, तो इस समय हम जो है दवाई का जो है जो शेड्यूल है उसमें हम ये कह सकते हैं कि डाइमेथियोन जिसको रोगोर बोलते हैं 25 EC या डाइडेमेटोन मिथाइल डेमेटोन जो होती है उसका यूज़ करें, या हम जो है पाउडर के रूप में मिथाइल पैराथीन 2% या मिथाइल मेलाथियोन जो है 5% दवा का हम इसमें बुरकाव करें। 25 किलो पर हेक्टर के हिसाब से इसमें काम ले सकते हैं, तो इस हिसाब से जो है इससे इन कीड़ों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें जो है डाइमेथियोट 30 EC जो है उसमें 1 से 1.25 लीटर दवा को हम जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल कर और उसका हम जो है छिड़काव कर सकते हैं, या आप जो है इसमें आगे जो है ये डाइमेथियोट है उसके बाद आपको जो है मोनोक्रोटोफॉस का भी, मोनोक्रोटोफॉस 36 WSL जो होती है उसका भी हम जो है 1 से 1.25 लीटर पानी काम में ले सकते हैं। अब इसमें यह है कि अगर ये दवाएं उपलब्ध ना हो तो साइपरमेथ्रीन 25 EC को हम जो है 125 ml दवा को 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर और उसका छिड़काव कर सकते हैं, इससे इन कीड़ों का प्रकोप सावधानी आसानी से और रोका जा सकता है। इसका जो है स्प्रे या छिड़काव सावधानी पूर्वक आप फसल पर करें। छिड़काव करते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हवा का जो है विपरीत प्रभाव में जो है छिड़काव ना करें, और या तो सुबह या शाम के टाइम में हम इस पर फसल पर छिड़काव करें, और छिड़काव सामान्य रूप से फसल पर होना चाहिए। और आपको सुरक्षा के रूप में फेस माउथ या हैंड ग्लव्स वगैरह जो सभी हैं वो सभी आपको जो है काम में लेना चाहिए।
1: आज विश्व के 1 दर्जन से अधिक देश कपास की खेती करते हैं। इनमें भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील, मिस्र, सूडान, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको हैं। भारत में 119 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में कपास की खेती की जाती है। कपास उत्पादन में हम आज भी सबसे बड़े उत्पादक हैं। हमारे देश में कपास की खेती गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में की जाती है। हालांकि सबसे बड़े कपास उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। इन 3 राज्यों में देश की कुल उपज की 60% कपास पैदा होती है, जबकि देश के कुल कपास की खेती के क्षेत्रफल में अकेले गुजरात की हिस्सेदारी 21% है। देश के किसानों के लिए कपास हमेशा से एक नकदी फसल रही है, इससे किसानों को तत्काल आय प्राप्त होती है। इसकी खेती के लिए काली चिकनी मिट्टी उपयुक्त है। इसके लिए मध्यम या सामान्य से कुछ अधिक

0: तापमान उपयुक्त माना जाता है। कपास की अच्छी उपज 21 से 27 सेंटीग्रेड तापमान में ली जा सकती है। तापमान इससे अधिक होने पर भी कपास की अच्छी खेती होती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत को कपास की खेती के अधिक अनुकूल माना जाता है, लेकिन अधिक बरसात कपास की खेती के लिए नुकसानदेह है। कपास की फसल सामान्य तौर पर 200 से 230 दिन में तैयार हो जाती है। भारत में तीन तीन तरह की कपास की खेती की जा रही है। इनमें लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास है।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आइए जानते हैं कपास के ऊपर कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और हम इसे कैसे निजात पा सकते हैं।
2: इसमें कई तरह के कीट आते हैं। शुरू की अवस्था में इस पर जैसीट का और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद लीफ पर जो है माइलोसीरस का प्रकोप काफ़ी होता है। जब बाल ओपनिंग होती है उस समय रेड काटन बग और डस्की काटन बग का प्रकोप काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। और फ्लावरिंग के समय जो है कई तरह के बाल वर्म का प्रकोप बाल्स पे होता है, जिसकी वजह से फसल का नुकसान बहुत अधिक होता है। जैसिड और वाइट फ्लाई का प्रकोप नॉर्मली 30 से 35 दिन की क्रॉप जब होती है तब जो है इसका स्टार्ट हो जाता है प्रकोप। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे 30-35 दिन तक फसल पर जो सकिंग के पेस्ट हैं, जिसमें जैसिड और वाइट फ्लाई होती है, उसके प्रकोप से फसल को बचाया जा सकता है। इसके बाद 30-35 दिन के बाद जब व्हाइट फ्लाई और जैसिड का प्रकोप फसलों पर देखा जाए, उस समय जो है इमिडाक्लोपिड और थायमेथॉक्सान का छिड़काव भी कर सकते हैं किसान भाई, जो जैसिड और व्हाइट फ्लाई के प्रकोप को कम करने में काफ़ी सहायक होता है। फ्लावरिंग के समय बालवर्म कॉम्प्लेक्स का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसमें चित्तीदार इरियास का प्रकोप होता है, पिंक बालवर्म का प्रकोप होता है और एक अमेरिकन बालवर्म हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। ये तीन बालवर्म का प्रकोप जो है बाल फॉर्मेशन के समय कपास की फसल पे होता है। बालवर्म कॉम्प्लेक्स को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के कीटनाशक उपलब्ध हैं, जिसका किसान भाई छिड़काव करके बालवर्म के इन्फेस्टेशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। वैसे बीटी काटन लगाने से इन बालवर्म का प्रकोप काफ़ी मात्रा में नहीं होता है और बीटी का प्रयोग करने की वजह से किसान भाई जो है बालवर्म के प्रकोप को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये बालवर्म कॉम्प्लेक्स का प्रकोप फसल पर देखा जाता है तो कई तरह के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें फ्लूबेंडियामाइड है। इसका छिड़काव किसान भाई 10 ग्राम 15 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़क सकते हैं। क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो बाजार में कोराजिन के नाम से पाया जाता है, इसका छिड़काव किसान भाई 5 ml कोराजिन को 15 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एसीफेट है, एसीफेट पाउडर आता है जिसको पानी में मिक्स करके आप एसीफेट का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है फिप्रोनिल है, फिप्रोनिल का प्रयोग किसान भाई 2 ml कीटनाशक को 1 liter पानी में मिला करके घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में स्पाइनोसेड भी उपलब्ध है, जिसका 5 ml कीटनाशक को 15 liter पानी में मिला करके उसका घोल बना करके किसान भाई अपना कपास की फसल पर अगर छिड़काव कर देते हैं तो कि जो बालवर्म का कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। स्टार्टिंग में फ्लावरिंग से थोड़ा सा पहले जो है मॉनिटरिंग के लिए फेरोमोन ट्रैप बाजार में उपलब्ध हैं, इसका प्रयोग भी किसान भाई कर सकते हैं। इससे जो है जो आने वाले जो बालवर्म के कीट हैं उनके पॉपुलेशन को मॉनिटर किया जा सकता है, ताकि उसके उपचार के लिए हम जो है उपयुक्त तरीका अपना सकें। तो फेरोमोन ट्रैप भी बाजार में तरह तरह की उपलब्ध हैं, जिसको फ्लावरिंग से थोड़ा सा पहले किसान जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्मली 5 ट्रैप जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से मॉनिटरिंग पर्पस के लिए लगाई जाती है, और अगर इसको कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन ट्रैप की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, जो लगभग 20 से 25 ट्रैप पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर किसान भाई लगाते हैं तो काफ़ी हद तक जो है ये बालवर्म के जो एडल्ट हैं उनको ट्रैप किया जा सकता है, और जिससे आपकी फसल पर इनके प्रकोप को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।
1: ये आवाज़ है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
3: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: कपास की उपज में देश ने उल्लेखनीय मात्रात्मक वृद्धि प्राप्त की है। 70 के दशक के बाद देश में उपज तेजी से बढ़ी है। देशी वस्त्र उद्योग की आवश्यकता के अनुसार हम कपास का उत्पादन कर रहे हैं। एक दशक में प्रति हेक्टेयर उपज 300 किलोग्राम से बढ़कर 500 किलोग्राम तक हो गई है। हालांकि अभी इसे विश्व औसत 700 किलोग्राम तक पहुंचाया जाना है। भारत सरकार के कपास प्रौद्योगिकी मिशन ने उपज बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब कपास की खेती में नए अनुसंधान से इसकी फसल तैयार होने की अवधि को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नागपुर स्थित कपास अनुसंधान संस्थान 100 दिन में तैयार होने वाली किस्म विकसित करने में जुटा है। नए अनुसंधान से कपास की खेती से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
3: किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ। किसान साथियों, अभी हमने कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जाना। हमें कौन सी भूमि में कपास की खेती करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां कपास में होती है, और साथ ही कौन कौन सी कीटें सीजन के हिसाब से कपास पर हावी होती है, और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम आगे जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
3: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। आइए कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक किसान की मुजबानी।
2: यूरिया अभी तक मैंने इसमें दिखाया नहीं, और अब की बार बारिश होगी तब इसमें यूरिया डालूंगा। ये आपने सुना होगा भाई, खेती समरे नड़ाई थे, जिंदगी समरे पढ़ाई थे, बार बार खेत का निरीक्षण करते रहो सुबह शाम। मैंने सिर्फ अभी तक इसमें 15 दिन हो गए एक स्प्रे किया था, वो भी अपना नेचुरल काढ़ा तैयार करके जड़ी बूटियों द्वारा, और सिर्फ मैं दो ही स्प्रे करता हूँ। और कीटनाशक के बारे में ये कहता हूँ मैं, एक तो भाई ये आप मिला के कीटनाशक मत छिड़को अंदाजूंगा, जैसे मोनो मिला लिया उसमें रगोर मिला लिया एंडोसल्फान मिला लिया फेनवलरेट मिला लिया, वो समीकरण क्या हो जाता है, कर दिया डीएपी मिला दिया यूरिया मिला दिया जिंक पोस्ट वगैरह वगैरह, उसका साल्ट तो देखो क्या बनता है।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: ने चौथे महीने की 25 तारीख को लगाया था।
3: हाँ, ये वैरायटी भी एक बार बता दीजिए।
2: वैरायटी 776 नंबर वैरायटी लगाई है।
3: राशि की 776
2: वैरायटी। राशि 776
3: जी,
2: ये ही पिछली बार लगाई थी, इसका रिजल्ट अच्छा है।
3: अच्छा,
2: और इसमें मैंने लगाने के बाद में पहले डीएपी वगैरह कुछ नहीं बोया,
3: मतलब बुआई के समय पर आपने कोई खाद इसमें नहीं डाली?
2: कुछ नहीं, खाली
3: जी
2: सूखे की बांध करके पानी लगा के इसको बिजाई करवा दी, 3 पैकेट बीज डाले और 1.5 एकड़ में
3: जी
2: राशि 776। और उसके बाद मैंने पहले अड़वा के बाद दूसरी अड़वा में इसमें खाली एक बैग डीएपी बोया है।
3: हाँ, कि जो ट्रैक्टर से सिलर द्वारा निराई गुड़ाई करते हैं ना, उस टाइम पर आपने 1.5 एकड़ में 45 किलोग्राम या फिर 50 किलोग्राम डीएपी
2: डाले है।
3: ठीक है,
2: उसके बाद मैंने इसमें दूसरी अड़वा करवाई है ना, उसमें मैंने जैविक खाद, ये जो बटोड़े की होती है ना गली सड़ी खाद, एक बैग ये और एक बैग मुर्गा छाण की दोनों।
3: हाँ, जो पोल्ट्री फार्म की जो खाद होती है, जो मुर्गी की बीड होती है,
2: वो और दोनों को मिला करके ये बोया है। यूरिया अभी तक मैंने इसमें दिखाया नहीं है। यूरिया दिखाने का कारण ये है कि यूरिया डाल दो परवा हवा चलती है आजकल, उसमें इसमें चिड़चिड़ापन है, मरोड़िया माऊ तेला सब कीटनाशक लग जाते हैं। क्यों, यूरिया तो आपको सभी मालूम है कि यूरिया में नाइट्रोजन ज्यादा होती है।
3: हाँ,
2: और यूरिया में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन पर तो ये ऑटोमेटिक आक्रमण
3: शत्रु कीट जो है नाइट्रोजन की तरफ आकर्षित होता है।
2: अब मैंने इसके लिए यूरिया नहीं डाला है, ला के रख रखा है, जब ये आज चली है।

0: चलेगी और अब की बार बारिश होगी तब इसमें यूरिया डालूंगा, यानी 50% फल आने पर ही मैं इसको यूरिया देता हूँ। पौधा बिल्कुल सेफ है, कोई इसमें वो शिकायत नहीं है।
1: किसान साथियों, जैसा कि इस अपने किसान भाई ने हमें कहा कि उन्होंने अभी तक यूरिया नहीं डाला है और साथ ही ये बता रहे हैं कि हवा को ध्यान में रखकर यूरिया डालना चाहिए।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। आइए जानते हैं कैसे हम हवा को ध्यान में रखते हुए यूरिया का प्रयोग करना चाहिए।
0: इस समय ये आग चली गई, हवा चलनी थी, अगर ये 15 दिन चल जाएगी तो इसमें फल की कोई कमी नहीं रहेगी।
3: मतलब पश्चिमी दिशा से जो हवा
0: पश्चिमी दिशा से हवा चलनी थी पिछवा, और इसमें अब नमी बनाए रखना इस हवा में, क्योंकि ये हवा 2-3 दिन चलेगी तो फसल में सूखा भी आ जाएगा, क्योंकि अब पौधा खुराक ले रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कम खर्च अधिक पैदावार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, किसान बने माला माल।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
0: क्यों? सफलता ही मेहनत ही सफलता की कुंजी है।
3: बिल्कुल,
0: आप बुजुर्गों से सुना होगा कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: अपना काम है कर्म करना, लेना देना मालिक का हाथ है।
3: बिल्कुल, किसान जो है मेहनत के बलबूते ही जो हासिल करता है सब कुछ,
0: और मेहनत करने वाले को भगवान अपने आप देता है। कहते हैं देता है तो छपर फाड़ के देता है, लेता है तो भी ले लेता है। मैंने सिर्फ अभी तक इसमें 15 दिन हो गए, एक स्प्रे किया था, वो भी अपना नेचुरल काढ़ा तैयार करके जड़ी बूटियों द्वारा।
3: हाँ,
0: उसका और मोनो का,
3: और मोनोक्रोटोफोस जो 36%
0: जो मोनोक्रोटोफोस है उसका किया है। अभी इसका दूसरा 5-7 दिन में और करने वाला हूँ, वो दूसरा काढ़ा तैयार कर दिया है और सिर्फ मैं 2 ही स्प्रे करता हूँ।
3: अच्छा, मतलब पूरे सीजन में कपास में आप केवल 2 स्प्रे करते हो,
0: बाकी और ज्यादा मौसम बताएगा, लेकिन 2 ही करता हूँ मैं तकरीबन।
3: हाँ,
0: हो सकता है मौसम की वजह से कई बार 3 भी करनी पड़ जाए।
3: हाँ, मतलब मौसम
0: वो तो समय बताएगा।
3: हाँ, कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो 3 भी लेनी पड़ सकती है स्प्रे। लेकिन आपने बताया कि जैविक फॉर्मूला, तो आप प्रत्येक स्प्रे के साथ में जो है ये घोल डालते हैं?
0: हाँ, ये बिल्कुल ये जरूरी डालता हूँ। इसमें ये 12-13 प्रकार के आइटमों द्वारा बना हुआ काढ़ा है। इसमें नीमबासिडिन नामक दवाई भी बन जाती है, नीम का तेल बन जाता
3: है। जो नीम का तेल हम बाजार से महंगे
0: भाव पर लोगे, वहाँ लूटोगे, पैसे लगाओगे, ये थोड़ी मेहनत का काम है।
3: हाँ, तो ये आप इससे मतलब उससे भी ज्यादा 10% वो तो एक केवल नीम का तेल होता है। लेकिन यहाँ पर 10 प्रकार की चीजें डालकर उससे 10 गुना
0: बेहतर है।
3: हाँ, बेहतर यहाँ पर तो आप तैयार कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के बलबूते पर। तो आप किसानों को जो कपास की खेती करते हैं उनको क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे, किस प्रकार से उनको करनी चाहिए जैविक खेती के साथ साथ में, जैसे आपने पेस्टिसाइड भी डालते हैं बड़ी सावधानी तरीके से, तो जरूरत के अनुसार उनको किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, क्या कहना चाहोगे?
0: मैं यही कहता हूँ उनको अपने हिसाब से, सबसे पहले तो कपास में मेन काम तो है उसकी नड़ाई गुड़ाई करना। आपने सुना होगा सब की बीमारी मिट्टी और पानी में है। अगर कपास के अंदर घास फूस नहीं होगा ना तो वैसे ही मक्खी मच्छर कम होंगे,
3: कम आएंगे। बिल्कुल,
0: हाँ, क्योंकि सुना है भाई जिंदगी समरे पढ़ाई तर खेती समरे नड़ाई गुड़ाई से, पहला काम तो ये है।
3: ठीक है, उसके बाद में खाद,
0: उसके बाद में खाद करो, आप हिसाब से यूज करो। ये आप कर दिया DAP मिला दिया, यूरिया मिला दिया, जिंक पोस्ट वगैरह वगैरह, उसका साल्ट तो देखो क्या बनता है। क्यों ऐसा काम वो क्यों करा आप? अपने खाली DAP बो दो, अपने बटोड़े के नीचे गली सड़ी हुई जैविक खाद है।
3: हाँ, मतलब कहने का अभिप्राय यही है कि ये देखो कि पौधे को आवश्यकता किस चीज की है।
0: ये पौधा है ना, ये देसी खाद उनसे तो मजबूत हो गया। अब इसको ये काटा है, ये पत्ते के थ्रू इसको खुराक देगा।
3: बिल्कुल,
0: हाँ, क्योंकि अब फल का टाइम चल रहा है।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आप लोग रेडियो आपड़ी बातें।
3: और इसके साथ में कीटनाशक के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे?
0: और कीटनाशक के बारे में ये कहता हूँ मैं, एक तो भाई ये आप मिला के कीटनाशक मत छिड़को अंदाजे।
3: हाँ,
0: जैसे मोनो मिला लिया, उसमें रगोर मिला लिया, एंडोसल्फान मिला लिया, फेनवलरेट मिला लिया, वो समीकरण क्या हो जाता है? ऐसा करने की बजाय आप 5-7 दिन के अंतराल पर कर दीजिए। इससे तो बेहतर वही होगा कि ये काफी आइटम मिलाने से वो इसकी वो
3: जैसे कीटनाशक में ही मिला लेते हैं,
0: वो मिलाते हैं
3: डाल देते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है।
0: कण दूसरा बन जाता है और उसमें काफी हमारे नुकसान भी हो जाता है।
3: उसका एक तो रिजल्ट तो कम होगा ही होगा, ये तो आप मानकर चले। जितनी ज्यादा मात्रा में आप स्प्रे को या फिर जो
0: आपने सुना है कि मोनो बढ़वार करेगी, पत्ते का चिकनापन करेगी, माव तेला मरोड़िया साफ करेगी, एंडोसल्फान कीड़े की दवा होगी, और दूसरी वो किस चीज की होगी भाई, ये फूल पत्ती को गंदने नहीं देगी, इस तरह की बजाय आप 5-7 दिन के अंतरापल करें तो बेहतर होगा।
3: ठीक है
1: किसान साथियों, अभी जैसा कि आपने सुना, हमारे किसान भाई अपने खेतों में रासायनिक दवाइयों से कोसों दूर है। वो चाहते हैं कि अधिकतर वो खुद से बनाई हुई दवाई डाले, रसायनों से दूर रहे, रासायनिक दवाइयों से, रासायनिक खाद से आदि चीजों से वो चाहते हैं कि उसका कम से कम प्रयोग करें, ज्यादा प्रयोग उसका ना करें, और वह खुद अपने घर पे ही 5 पत्तियों का घोल तैयार करते हैं। जो 5 पत्तियों का घोल है वो यह न केवल कपास में इस्तेमाल किया जा सकता है, वरन इसे हम अन्य फसलों में भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रासायनिक फ्री है, ना इससे कोई हानि नहीं है, यह प्योर जैविक है। आप उसे खुद 5 पत्तियों के घोल से बनाया जा सकता है इसको।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
1: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपने कपास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, जिसमें उन्नत बीज, कपास में होने वाले नुकसान, कपास में होने वाले फायदे, कपास में पड़ने वाली कीटों और कपास के लिए उचित भूमि और उचित वातावरण क्या होना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चर्चा को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं झाबुआ के मौसम का हाल। किसान साथियों, अगर हम बात करें झाबुआ के मौसम की, तो झाबुआ का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 2.2 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 69.8 मिलीमीटर नापी गई है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता आया है। आज भी हम चर्चा करने वाले हैं कुछ और खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। खेती बाड़ी से जुड़ी इन जानकारियों को शुरू करने से पहले आइए मिलते हैं नवापाड़ा भंडारिया के पास बरोड़ गाँव के एक किसान से और सुनते हैं उनकी मुजबानी।
5: हमारा ना जमाना में बाकी खातर वगैरह कहीं नहीं था, सर पाक भी मल भी जो तो खातर ना को तो पाक मल नहीं मल लाभ नहीं उठाड़ी भी जगह तू कर।
6: हाँ, मतलब जगह में इतनो वसी होने क्या मान
5: वसी होने
6: पहले को तो अपना गोबर खातर नाख्या जाता थे
5: वस्ते लू
6: वो कोई जरूरत नहीं थी आप आते हमने इना खातर नु ते एक साल हूं इतनो मिलियो पहले को आते साल फिर डबल मिलू पड़ी
5: रहा आज मुठ में हुआ तो अपन पाक ले सकी नहीं पाक आलू नहीं सके जमा पे जमे हो करी सके
6: जमे हो करी सके
5: કેમ કે મૂળ નું ખાતર હોય તો પાકે નહીં તે નહીં પાકે
6: યાદ આવ જેવું તેવું પાછા આપડ આપણું ગોબર ખાતર પાછું નાખી નાખીને જગા વધારી
5: વધારી આપડે એના 1-2 ડગરા માં ખાતર નહીં થયું ને ગેડો પણ ડગરા મળે નહીં ને
6: હમટા ડગરા નહીં મળે ક્યાં
5: પેલખાતે
6: ઉકેડા દેખાય નહીં છોરા ભૂલી ગયા ઉકેડા પુનાન કે
5: નાખવાર હતું ને મળે કે હું નાખી આ લીધી મૂળ નું ખાતર પાળી રહ્યા આપણું જગા ઉપર લઈને બેઠા ની પાકી આલે જ્યાં તક ખાતર નહીં આવી ત્યાં તક પાક બી નહીં આલી રહી.
1: કિસાન ભાઈઓ, જેમ કે હમણે આપણું ચર્ચા કરતેલા ચર્ચામાં જેમ કે આપણ કિસાન ભાઈએ આપણને કીધું કે કેમ આપણ રાસાયણિક ખાતર નાખી ના આપણી જગા બી રાસાયણિક ખાતની આદિ થતી જઈ રહી અને હા આપણ જરૂરત હૈ કે આપણું એની જગાને કેમ વધારી શકીએ. કિસાન સાથીઓ, અભી આપને ભૂમિ સે જુડી હુઈ કુછ સમસ્યાઓ કો કિસાન ભાઈ કે મુંહ સે સુના ઓર આઈએ હમ આજ હમ ઇસી બિંદુ કો લેંગે ઓર ચર્ચા કરેંગે કેસે હમ જો હમારી ભૂમિ મે જો હમારી ભૂમિ જો બદલ ચૂકી હૈ જો ઠોસ હો ચૂકી હૈ પહેલે કેસે હમ ડાયરેક્ટ ગોબરી ખાદ કા ઇસ્તેમાલ કરકે હમારી કૃષિ કરતે થે લેકિન આજ સમય બદલ ચૂકા હૈ રાસાયણિક ખાદો કા પ્રયોગ કરતે કરતે આજ હમારી જમીન જો હૈ જો ઠોસ હોતી જા રહી હૈ ઉસે હમે કેસે નિજાત પાયા જા સકતા હૈ કેસે હમ ઇસે બચ સકતે હૈ ઓર કેસે હમ હમારી ભૂમિ કો પુનઃ સજીવ બના સકતે હૈ જાનેંગે એક્સપર્ટ કી રાય.
4: આપ સુન રહે હૈ ઝાબુઆ કા પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી બાતેં.
1: કિસાન સાથીઓ, આજ હમ ચર્ચા કરેંગે જૈવિક કૃષિ કે બારે મે કેચવા પાલન કો લેકર વર્મી કમ્પોસ્ટ કો લેકર ભૂમિ કો સજીવ બનાને કી ભિન્ન ભિન્ન વિધિઓ કો લેકર ચર્ચા કરેંગે સાથ હી જાનેંગે હમે કિસ તરહ કેસે ગોબરી જૈવિક ખાદ કી મદદ સે હમ હમારે જો હમારી રાસાયણિક ભૂમિ હૈ ઉસે હમ કેસે પુનઃ સજીવ બના સકતે હૈ ઓર સાથ હી જાનેંગે જૈવિક ખાદ બનાને કે મહત્વપૂર્ણ વિધિઓ કે બારે મે. उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट पर.
7: अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये रसायन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं. यही कारण है कि जागरूक किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं. जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कम्पोस्ट. इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर का उपलब्ध होना होता है. गाय के गोबर को पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं. इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है. वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है. इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है. इसके अलावा पैदावार भी ज्यादा मिलती है. वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि. पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है. हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है. पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है. नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है. केचुए डाले गए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट बनाकर छोड़ते जाते हैं. इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भरकर रख लिया जाता है. बेड विधि. इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं. इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है. बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है. इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनानी चाहिए. शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं. एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं. इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है. वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखनी चाहिए. कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते. वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए. यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं. गर्मी भेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 या 5 दिन पुराना गोबर लें। केचुआ खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
8: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, आपने वर्मी कंपोस्ट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। कैसे हम केचुआ पालन कर सकते हैं, केचुआओं के लिए क्या क्या वातानुकूलित जगहें होती है, कैसे किस जगह पर हम केचुआ पालन कर सकते हैं, साथ ही आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट द्वारा की गई खेती से हमें क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे की जाती है, कैसे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को।
2: वर्मी कंपोस्ट के फायदे को समझते हुए देश में बहुत सारे संस्थान इसे बनाने से लेकर इसके लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के हर पहलू को व्यावहारिक तौर पर करके दिखाया जाता है। यहाँ पर विज्ञान की प्रोफेसर के रूप में कार्यरत मीनाक्षी करवाल के मार्गदर्शन में वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
3: वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसके बारे में मुझे मेरे कॉलेज से पता चला। इसको हम अपने घर में भी प्रयोग कर रहे हैं। किचन का जो बचा कुचा अनकुक्ड वेस्ट होता है उसका प्रयोग, उसको हम डीकम्पोस्ट करके उसका ऑर्गेनिक यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।
4: घरों में जो केचुआ खाद है, केचुआ खाद का प्रयोग हम कई रूप से कर सकते हैं। जो घरों में सड़नशील पदार्थ यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस निकलते हैं उनका प्रयोग करके हम इसे अपने बागवानी और किचन गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देगा।
3: वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोजेक्ट के बारे में हमें हमारी मैम मीनाक्षी मैम से पता चला और ये बहुत ही यूजफुल एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और इससे ये बहुत ही ऑर्गेनिक है और इससे हमारे एनवायरनमेंट एंड हमारी हेल्थ को बहुत ही फायदा होता है।
2: यहाँ हर उस छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है जो इसके निर्माण में जरूरी है। इस संस्थान में इससे जुड़े सारे उपकरण मौजूद है और इसमें बेहतर से बेहतर तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वनस्पतिक कचरा जैसे कि कृषि अवशेष, नीम के पत्ते, हरी व सूखी पत्तियां, सड़ी गली सब्जियां और फल, घरेलू कचरा एवं पशुओं के गोबर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट के लिए इएसेनिया पेटिटा प्रजाति के केचुए का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है और इसमें अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। वर्मी कंपोस्टिंग को मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक टब में किया जा सकता है। इसे जमीन में गड्ढे बनाकर या क्यारियां बनाकर भी कर सकते हैं। गड्ढे की चौड़ाई लगभग 1 मीटर तक रखें और जगह की उपलब्धता के अनुसार लंबाई तय की जा सकती है। गहराई 1 मीटर के आसपास रखनी चाहिए। क्यारी की पहली सतह 4 से 5 सेंटीमीटर बालू बिछाकर बनाएं। इसके ऊपर दूसरी सतह पत्तों या भूसा आदि से बनाएं। इसके ऊपर जिस वनस्पति पदार्थ से आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गोबर में मिलाकर बिछा दें। इस कचरे को 18 से 20 दिन तक गलाने के बाद ही वर्मी रिएक्टर में डालना चाहिए, नहीं तो केचुए नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद 1000 केचुए प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊपरी सतह पर छोड़ दें। इसके बाद सतह पर पानी डालें और इसे किसी चीज से ढक दें। केचुए सूर्य का प्रकाश और अधिक तापमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए केचुआ खाद के उत्पादन के लिए छायादार जगह का होना जरूरी है। यदि पेड़ की छाया उपलब्ध ना हो तो लकड़ी गाड़ कर कच्चे घास फूस का शेड बनाया जा सकता है। शेड में समय समय पर नमी का भी ध्यान रखना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट 30 से 60 दिनों में तैयार हो जाता है। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए तो इसकी ऊपरी सतह भुरभुरी दानेदार चाय पत्ती जैसी होती है। इसको जमा करने के लिए पहले 3 से 4 दिन तक पानी गड्ढे में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से केचुए नीचे चले जाएंगे। हाथ से खुरच कर छोटे छोटे ढेर बना लेने चाहिए। हल्का सूखने पर जमा कर ले। कंपोस्ट को छायादार स्थान में सुखाकर 25 मिलीमीटर की छलनी से छानकर उपयोग करने के लिए पॉलीथिन में भर लेना चाहिए।
5: वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे खाद बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग से केंचुए की मदद से हम खाद बनाते हैं और इसमें या तो आप इसे धरती के ऊपर या फिर धरती में गड्ढा खोद के भी बना सकते हैं। धरती के अंदर जो आप गड्ढा खोद के बनाते हैं उसमें हमें यही ध्यान रखना है कि हम इसका जो चौड़ाई है वो 1 मीटर तक रख सकें और लंबाई आपकी जगह की सुविधानुसार से आप कितना भी इसे लंबा कर सकते हैं और इसका जो गहराई है वो 1-1.5 फुट से ज़्यादा ना हो। पानी जो है नमी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है और हमें ध्यान रखना है कि 60-70% तक हम इसमें नमी को मेंटेन करें और इस वजह से गर्मियों में हर रोज हम इसमें पानी छिड़कते हैं और सर्दियों में हम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तक हम इसमें नमी के लिए पानी छिड़क सकते हैं। हम इस बात पे भी ध्यान रखते हैं कि हमारा जो वर्मी कंपोस्टिंग पिट है वो छायादार जगह में हो। इसके लिए हम आप शेड लगा सकते हैं या फिर हम छायादार जगह में भी इसको बना के उस खर्चे को बचा सकते हैं। और तीसरी बात ध्यान रखने वाली है कि केंचुओं को ज्यादातर जो नेवला है या फिर पशु पक्षी हैं ज्यादातर वो खा सकते हैं, तो इसको हम उनसे बचा के रखें। इसके लिए आप उस पे पिट के ऊपर बोरी लगा सकते हैं ताकि वो उनसे दूर रहे और सुरक्षित रहे।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें कूड़ा कचरा जो हमारी किचन से निकलने वाला वेस्ट है उसको हम डाल सकते हैं। साथ ही आइए जानते हैं कौन से ऐसे कचरे हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमें अपने वर्मी कंपोस्ट में नहीं डालना चाहिए, जिसे डालने से हमारे जो केचुए हैं वो मर सकते हैं। आइए जानते हैं।
2: वर्मी कंपोस्ट को बनाने के दौरान कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। पकाया हुआ खाना, प्याज, नींबू, खट्टे और जहरीले तत्व वर्मी रिएक्टर में नहीं डालने चाहिए। वर्मी रिएक्टर की क्यारियों को धूप और बारिश से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कचरे को वर्मी रिएक्टर में डालने से पहले 20 दिन तक सड़ने देना चाहिए। इससे सड़ने के दौरान जो गर्मी निकलती है उससे केचुओं को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। समय समय पर कचरे को हिलाते रहना चाहिए जिससे वर्मी रिएक्टर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे और वैसी विषैली गैसों का निर्माण ना हो सके जो केचुओं के लिए नुकसानदायक है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आपके लिए खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। दोस्तों, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट खाद से हम कौन कौन सी खेती कर सकते हैं और उस खेती से क्या क्या लाभ हम उठा सकते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: इस विराम के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट से हम कौन कौन सी खेती कर सकते हैं और उससे क्या क्या लाभ लिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को।
2: वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य सूक्ष्म तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केचुए द्वारा निर्मित खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ एवं उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिसका सीधा असर पौधों की वृद्धि पर पड़ता है। वर्मी कंपोस्ट वाली मिट्टी में भूक्षरण यानी मिट्टी का कटाव कम होता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार होता है। इसका लगातार प्रयोग करने से मिट्टी में अधिक समय तक पानी सिंचित रहता है। खेतों में केचुओं द्वारा निर्मित खाद के उपयोग से खरपतवार व कीड़ों का प्रकोप कम होता है तथा पौधों की रोग रोधक क्षमता भी बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से फसलों पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग में कमी आती है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ता है। किसान इसका बड़े पैमाने पर निर्माण करने के बाद इसे बेचकर बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। इससे प्रकृति को भी बहुत फायदा है।
3: इस प्रकार हमारे वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा अपशिष्ट का निपटान करना बहुत ही हमारे लिए सही रहेगा और प्रदूषण रहित पर्यावरण देने में सहयोगी रहेगा तथा हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रदूषण की वजह से दिक्कत आ रही है उसका भी हम निपटान कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं उनकी इनकम है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हम इसमें एक ऐसा जैविक खाद उपयोग कर रहे हैं जो कि वो घर पे ही बना सकते हैं और साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ट्रेंड को भी बढ़ा सकते हैं।
2: वर्मी कंपोस्ट से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, साथ ही भूमि, पौधों या अन्य प्राणियों पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर कहें तो इसके उपयोग से किसानों का जीवन सवर सकता है। कुछ किसान इसका लाभ लेकर अपना जीवन सुखमय बना रहे हैं।
4: वर्मी कंपोस्ट के फायदे को देखकर तो ऐसा लगता है कि इससे कई सारी समस्याओं से पार पाया जा सकता है, बट जरूरत है लोगों में और किसानों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने की। ऐसे में वर्मी कंपोस्ट न केवल बड़े पैमाने पर किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकता है, बल्कि हमारे प्रकृति के मोहक स्वरूप को बरकरार रखने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: किसान साथियों, आइए बढ़ाते हैं वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों को और सुनते हैं एक सफल किसान से वर्मी कंपोस्ट को कैसे प्रभावशाली और उपयोगी बनाया जा सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आप ध्यान रखना है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए, जिसमें सबसे पहले प्लास्टिक की सीट। प्लास्टिक की जो सीट है उसमें ये ध्यान रखना है कि वो फटी हुई ना हो। उसके बाद में हमको चाहिए गोबर। गोबर जो है वो कम से कम 5 से 7 दिन पुराना होना चाहिए और उसकी गर्मी निकल जाए, तभी उस गोबर को डालें। इसके बाद हमें चाहिए चारा फसल के अवशेष। लेकिन चारा फसल का जो अवशेष है उसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाला चारा है तो उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम में नहीं ले। अगर इस चारा फसल के अवशेष के साथ में हर जगह नीम होता है तो नीम के पत्ते डाल दिए जाए तो और उसकी गुणवत्ता जो है खाद की बढ़ जाएगी और इसको जिस फसल में भी काम में लेंगे उसके अंदर कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी नीम के कारण कम होगा। इसके बाद हमको चाहिए खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी में ध्यान देने की बात है कि ऐसी वस्तुएं जो नहीं सड़ती है नहीं गलती है उनको छांट करके अलग कर दे। केचुए की जो बेड लगा रहे हैं उसके अंदर 50 से 60% पानी होना चाहिए, तो पानी जो है साफ जगह से लेना चाहिए, गंदा पानी काम में ना ले जहाँ तक तो ध्यान रखे। सबसे पहले जो है अपन प्लास्टिक की सीट जो है वो जमीन के ऊपर बिछाएंगे। इसको हम चाहे तो खड्डा खोद कर भी कर सकते हैं और अगर जमीन की कमी है और कोई शहरों के अंदर रहते हैं तो वो लकड़ी की मचान वगैरह बना करके भी इसको वर्मी कंपोस्ट को कर सकते हैं। खड्डा खोद के भी प्लास्टिक की सीट लगाना इसलिए जरूरी है या समतल जगह इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वो पानी जो ऊपर से डालेंगे वो नीचे बह करके नहीं जाए। चारा फसल का अवशेष जो है इसको अपन डाल रहे हैं, ये कम से कम 3 से 4 इंच की एक परत लगाएंगे चारा फसल अवशेष की जो तय लगाई है। उसके बाद में हम जो है पानी का छिड़काव करेंगे। प्रत्येक परत के बाद में पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है। ये जब लगाते हैं उस टाइम की बात है, उसके बाद में हमको इतना पानी डालना है कि उसके अंदर 50 से 60% नमी बनी रहे। अगर सर्दी का समय है तो हमको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना है और गर्मी के टाइम में 1 दिन में सुबह के टाइम में पानी इसमें डालना है। चारा फसल के अवशेष के साथ में नीम की पत्तियां जो है वो भी मिक्स कर दी जाए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो गोबर और मिट्टी का जो मिश्रण डाला है उसकी भी जो परत है वो 3 से 4 इंच बड़ी होगी और इसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। वर्मिकास्ट जिसके अंदर केचुआ और केचुओं के अंडों का मिश्रण है जिसको हम अब इस बेड के अंदर डालेंगे और इसको समान रूप से पूरे बेड के अंदर अपन को बिखेरना है। केचुआ जो होता है वो 0 से 40 डिग्री तापक्रम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील तब होता है जब बेड के अंदर 28 से 32 डिग्री तापक्रम और 50 से 60% नमी होती है। 1 किलो केचुआ 24 घंटे के अंदर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बना देता है। अब इसके ऊपर हम गोबर की वापस एक परत लगाएंगे जो 3 से 4 इंच बड़ी होगी। अब पुनः हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़केंगे। केचुए के जो मुर्गी है, मेंढक है, चूहे है, कुत्ते हैं, नेवला और गिरगिट, ये इसके दुश्मन है तो इनको हमको बचा के रखना है। अंत में हम जो है नीम की पत्तियां और जो चारा फसल के अवशेष है उन दोनों को मिला करके अंतिम एक परत जो है इसके ऊपर 3 से 4 इंच की लगाएंगे। बस ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि इस बेड की ऊंचाई जो है वो 1.25 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये चाय की पत्ती के समान नज़र आने लग जाए तो 2-3 दिन तक इसमें पानी छिड़कना बंद कर दें और खुली जगह में जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ पर इसका ढेर लगा दें। तो जब ढेर लगाएंगे तो इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो केचुए जो है वो उस खाद के अंदर ढेर में घुस जाएंगे और ये इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बन करके तैयार हो जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि परत दर परत हमने जो है वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाई है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही लगाई जाए। ये सारी जो सामग्री है उसको इकट्ठा करके हम सीधा ही उसको वर्मी कंपोस्ट की बेड लगा सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद का पैकेट है जो बिल्कुल एकदम से चाय की पत्ती की तरह नज़र आ रहा है। ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है इसके अंदर ये विशेषता होती है कि इस खाद के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पैराट्रॉपिक झिल्ली कहते हैं। ये पैराट्रॉपिक झिल्ली जो है सिंचाई जल के वाष्पीकरण को कम करती है। तो इससे किसान भाइयों को ये फायदा होता है कि जहाँ 5 पिलाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे 3 पिलाई करेंगे तो फसल की पैदावार जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर एंटीबायोटिक होता है, इसलिए इसको जिस फसल में भी आप काम में लेंगे उसमें बीमारियां कम लगेगी। जिस खेत में भी इस खाद का उपयोग किया जाएगा उसके अंदर खरपतवार कम उगेंगे, दीमक की समस्या नहीं होगी और सफ़ेद लट नहीं लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सस्ता विकल्प है जिसके मार्फत हम ये वर्मी कंपोस्ट खाद की एक घर पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप देखें

0: अगर खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें डालना चाहिए, उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ फील्ड क्रॉप है, जो फसल लगा रहे हैं, वहाँ पे 5 टन प्रति हेक्टर की हिसाब से डालते हैं, और सब्जी वाली फसलों के अंदर 7.5 टन प्रति हेक्टर की दर से डालते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम जानेंगे एक सफल किसान की कहानी। उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं प्यारे से भीली गीत को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में आइए सुनते हैं एक सफल किसान की दास्तां।
2: मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ।
1: भीड़ से हटकर सोचना, भीड़ से अलग होकर चलना, इनकी अपनी एक पहचान है।
2: आज से 20 साल पहले यही रासायनिक खेती करता और जो लोग कर रहे हैं वही खर्चा करता, लेकिन मैंने धीरे धीरे ये देखा कि पैदावार एक दो साल जरूर बढ़ती है इससे, और एक दो साल पैदावार बढ़ने के बाद में मैंने देखा कि हर साल इसकी मात्रा बढ़ाना पड़ती है अपन को, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हर्बिसाइड हो, हर साल इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा अपन को बढ़ाना पड़ती। तो मेरा भी 20 साल पहले का ये बता रहा हूँ आपको कि इतना लेवल आ गया था 15 से 20 साल पहले का कि जो अपन खर्चा जितना लगा रहे हैं इसमें उतना खर्चा बरोबरी हो जाता है, समझो कुछ भी नहीं बचता है, सारी चीजें बाजार से क्रय करने में ही अपना जो आमदनी आती है वो लग जाती है। तो मैं थोड़ा सा परेशानी में आ गया था कि क्यों ना अपन इस खेती को कुछ चेंजेस करें या कुछ अलग हटके करें। तो पहले तो मैं औषधि की तरफ मुड़ा, तो औषधि फसल में मैंने सर्वप्रथम जीरा और अजवाइन और काल में एक तुलसी अश्वगंधा इसके ऊपर थोड़े थोड़े एरिया में एक एक क्यारी क्यारी में डेमोनेशन के रूप में डाला, और उससे देखा सीखा अपन ने कि इसमें दूसरी फसलें हैं उसकी तुलना में क्या अपन को प्रॉफिट मिलता है। तो मेरे को जो परंपरागत फसलें थे उससे करीब 2 गुने से 3 गुने तक उसमें प्रॉफिट मिला। मैं जब भी कोई 70 साल का 75 साल का 80 साल का जो बुजुर्ग रहता है तो शाम सुबह कम से कम आधी घंटा तो उसके पास में मैं बिताता हूँ, चाहे मेरे गांव का हो, चाहे पास के गांव का हो, चाहे जिले का कोई भी हो। तो मैं उनको बात जटिलता से ये सीखता कि आप पहले कोई खाद डालते या कोई पहले आप दवाई डालते तो बोलते कि बिल्कुल भी नहीं डालते। तो मैंने उनसे चीजें सीख के क्षेत्र में शुरू करा, तो लोग कुछ लोग तो पागल समझते कि यार ये तो खाद नहीं डाल रहा है, ये तो ये नहीं कर रहा, तो इसको क्या पैदा होगी और इससे क्या क्या उत्पादन मिलेगा। उस साल मैंने जो यील्ड कमाई, जो उपज कमाई, वो जो दूसरी किसान कमा रहे थे उससे समझ लो कि 20% उपज मेरे को ज़्यादा मिली। मेरे को धीरे धीरे इसकी तरफ किसानों को भी जो बताने के लिए भी हो गया कि सर्टिफाइड भी आपको कराना जरूरी है जैविक खेती के साथ में। तो मैंने किसी का फर्स्ट ईयर है, किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल है, ऐसे करके कम से कम 75 से 100 किसान को मैंने जो सर्टिफाइड करवाया है, और उनका मार्केट की जहाँ समस्या आती है तो मैं उनके जो जहाँ जैविक हाट लगते हैं, जैविक जो फार्मर का जो प्रोडक्ट खरीदती है कंपनियाँ, उनसे मैंने मिलवाया, और उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके वहाँ पे, जैसे मैं पूरे सभी तरह की क्राप तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, तो कोई ग्रेन पैदा कर रहा है, कोई पल्सेस दाल पैदा कर रहा है, कोई फूल भी पैदा कर रहा है गेंदा का, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कहाँ पे मार्केट है उनका और ऑर्गेनिक कौन खरीदता है। तो उनका पैदावार से लगा के मार्केटिंग तक का करवा रहा हूँ, तो लोग भी खुश है। 10 एकड़ जमीन वाला यदि एक 30x10 का यदि एक वर्मी कंपोस्ट का शेड बना ले तो मैं समझता हूँ कि उसको बाजार से कोई खाद पानी लाने की जरूरत नहीं है। और ये देख रहे हो ये जो दवाई बनाने का है, इसकी विधि भी मैंने बताई, कुछ खाद भी अपना घर का, दवाई भी अपने घर की, प्रोडक्ट ऑर्गेनिक के आपके पैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या खेती हो सकती है जैविक खेती। अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी, कोच, तुलसी 2 तरह की लेता हूँ, राम तुलसी, श्याम तुलसी, काल में अजवाइन, हल्दी, अदरक और गराड़ू, मेथी दाने, कलौंजी, स्टेविया, मूसक दाना, यहाँ तक कि इसबगोल और चंद्रसूर, कम से कम 15 से 20 तरह की फसलें खरीफ और रबी की में मेडिसिनल फसल उगाता हूँ। और जो फील्ड में जाके भी मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे क्षेत्र में वो नरवाई जलाने का प्रचलन है, तो वहाँ पे मैं जाके बताता हूँ उनको कि आप 1 एकड़ में गेहूं की नरवाई जला रहे हो तो आधा एकड़ में जलाओ आप, और आधा एकड़ में गेहूं के जो डंठल रहते हैं उसको रोटावीटर से उसी में मिलाओ खेती में, और इस आधा एकड़ का और उसका जो नरवाई जलाई उसका अंतर आपको पानी गिरेगा वहीं से मालूम पड़ जाएगा। यदि आपने रोटावीटर से जो नरवाई अंदर रोटावीटर से मिलाई है उसमें फर्स्ट पानी जो गिरेगा तो वो खेत से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। और जो आपने नरवाई जलाई है उसमें जो ऊपर से जीवाणु बैक्टीरिया जो 1-2 इंच के जो ख़त्म हो गए उसमें आपको पानी बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा या बखेत से बाहर जाता हुआ दिखेगा।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि एवं जैविक खेती के लाभ, तकनीकी विधियां आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।

0: आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं दोस्तों, जो प्रतिभा, जो गायिका हमारे साथ हैं, आप उनके बारे में जानेंगे, उनके गीत सुनेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। मेरे साथ हैं संध्या जी। मैं संध्या जी का स्वागत करते हुए, उनको पुकारते हुए उनसे छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि हमारी जितने भी सुनने वाले हमारी फैमिली मेंबर, आज की कलाकार के फैमिली मेंबर जुटे हैं संगीत से प्रभावित होकर, पैशनेट होकर, तो आप उनसे बात करो ना मैम, जरा उनको बताओ तो सही, आप कौन हो, कहाँ हो, क्या करती हो आप?
1: नमस्कार समीर जी, मैं संध्या। आप सबका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है, आप सब यहाँ मुझे सुनने के लिए आए। और मैं सिंपल होममेकर हूँ, बैंगलोर में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड आईटी में हैं, मेरे दो बच्चे हैं। और सिंगिंग का शौक मुझे बचपन से है, स्कूल टाइम से गाती आई हूँ। तो अभी तो फिलहाल बस इतना ही बता सकती हूँ, बाकी तो समीर जी जो पूछेंगे वो बताऊंगी।
0: ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सो क्यूट। सो संध्या जी, एक बात बताइए, अभी आप बैंगलोर रह रहे हो और आप एक होम मेकर हो, दैट्स वेरी नाइस। ऑफ कोर्स इससे बड़ा काम इस दुनिया में हो नहीं सकता। लोग बाग इसको बड़ा आसान मानते हैं, दरअसल आसान है नहीं ये काम।
1: नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। आसान तो नहीं।
0: लेकिन आप बैंगलोर में हमेशा से रहते रहे या कहीं और से आए?
1: नहीं, हम एक्चुअली काफी सालों से बाहर थे, मतलब इंडिया से बाहर थे। तो हम 3 साल पहले इंडिया वापस आए हैं, तो 3 सालों से हम बैंगलोर में हैं।
0: आपके कहने के अंदाज से मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि आप शायद लखनऊ के हैं?
1: लखनऊ की तो नहीं, मैं प्रयागराज से हूँ।
0: okay, प्रयागराज। हाँ, तो बिल्कुल पास में ही हुआ, ज्यादा दूर नहीं हुआ।
1: क्योंकि पड़ोस में।
0: हाँ जी, क्योंकि अगल बगल में, मतलब इस इलाके में लोग बाग मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं।
1: जी।
0: मैं वो सुन रहा था। चलिए, तो संध्या जी मुझे ये बताओ, बैंगलोर में भी आपको कुछ वक्त तो हो गया। ओके
1: जी, 3 साल हो गए।
0: 3 साल, ऑलराइट। तो बैंगलोर में खाने की, मतलब कि, मतलब कोई डिश वहीं की पर्टिकुलर, देखिए आप मेरे को प्लीज मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और केएफसी का चिकन मत बताना, ये तो ब्रांड्स चारों तरफ अवेलेबल है। बैंगलोर की कोई खास, मतलब टिपिकल बैंगलोरियन चीज जो आपने खाई, जिसको खा के मजा आ गया हो आपको, ऐसा कुछ चीज बताइए ना।
1: एक्चुअली सच कहूं समीर जी, तो खाने में मुझे अपने तरफ की चीजें ज्यादा पसंद है, और मैं बहुत देसी हूँ, मुझे बहुत बेसिक जो सीजनल चीजें होती है ना, वैसी चीजें खाना पसंद है जो स्ट्रीट पर मिलती है ऐसे। तो खाने का बहुत शौक नहीं है, बट मैंने डोसा खाया यहाँ साउथ में आके। और मुझे यहाँ पर जो राइस के डिशेस बनते हैं ना, लेमन राइस, चित्रन्ना, कुछ कुछ पोंगल, मुझे वो सब ज्यादा अच्छा लगता है खाने में।
0: wow.
1: तो मैं ज्यादा वही प्रेफर करती हूँ खाना। जी,
0: बढ़िया। तो मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि आप बाहर से पहुंचे बैंगलोर में, तो क्या होता है ना, बाहरी व्यक्ति किसी भी दूसरी जगह पहुंचता है तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है।
1: जी,
0: कि
1: जी,
0: भाई वहां पर लोकल क्या मिलता है। जैसे अगर मैं पटना चला जाऊं तो लिट्टी चोखा खाने की कोशिश करूंगा।
1: हाँ,
0: अगर राजस्थान चला जाऊं तो बाटी, दाल बाटी खाने की कोशिश करूंगा। अहमदाबाद चला जाऊं तो ढोकला, फाफड़ा खाने की कोशिश करूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैं कोशिश कर रहा था जानने की कि बैंगलोर में ऐसी क्या चीज मिलती है।
1: मैंने एक्चुअली यहाँ जो नया ट्राई किया वो मुरक्को, कुछ स्नैक होता है यहाँ साउथ में ना, मुरक्को, मैंने वो खाया, मुझे वो अच्छा लगता है।
0: ओके
1: तो
0: नहीं, क्या किस चीज का होता है वो, मतलब ये कुछ नमकीन, दालमोट जैसी चीज है या क्या?
1: हाँ, नहीं दालमोट नहीं है, आई थिंक वो अपने तरफ उधर यूपी में चकली बनाते हैं ना, पापड़ के साथ में।
0: अच्छा,
1: वैसा, हाँ वैसा कुछ वो दाल से।

0: और मसालों से बनाते हैं।
1: वाओ, ओके।
0: जी
1: तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि संध्या जी कुछ कुछ तो बैंगलोर में ढूंढ रही हैं, मस्त खाने की चीज है। तो वो प्रयागराज से, यानी कि वही लिट्टी चोखा के और उसी इलाके से, लेकिन
0: बिल्कुल
1: लेकिन चलिए, एक नाम सुनने में आया मोरक्को, ऐसी कोई चीज। अभी तो एक बार ठहरते हैं, पहले संध्या जी के जरा गाए हुए गीतों का आनंद उठा लें, फिर हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी गायकी, हमेशा की तरह झूम जाने वाली शाम। संध्या जी, चलिए आपके म्यूजिक के ही बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आपका म्यूजिक क्या है। किस तरीके का म्यूजिक आपको ज्यादा पसंद है? क्योंकि आप जिस इलाके को बिलोंग करते हो वहां भोजपुरी गीत भी बहुत चलते हैं, फोक म्यूजिक बहुत चलता है, बनारस बिल्कुल पास में ही है और मतलब बिहार भी बिल्कुल बस बॉर्डर में ही लग जाता है, लेकिन फिर भी गजल, बॉलीवुड सिंगिंग, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सूफी, भोजपुरी, किस तरीके का संगीत आपको ज्यादा पसंद है?
1: मैंने समीर जी एक्चुअली गाना सुनना शुरू किया है, जो इन्फ्लुएंस जो है मुझ पे मेरी मम्मी का है, तो बचपन से उन्होंने ही गाने जो मुझे सुनाए, तो मतलब मैं ज्यादा रेट्रो गाने ज्यादा पसंद करती हूँ, जो बॉलीवुड गाने हैं, यानी 50s, 60s, 70s के आसपास के, ज्यादा प्रेफरेबल वही है, मैं वही सुनती हूँ। कुछ 90s के गाने भी, 90s के तो खैर वो हमारा ही एरा था तो उसके गाने तो हमें पसंद है ही। तो और गजलों में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा लेट डेवलप हुआ, मतलब मैं कॉलेज आते आते मैंने थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया, तो गजलें भी सुनती हूँ। मैं बहुत डाई हार्ड ऐसा नहीं है गजलों के बारे में, मैं इतनी फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ लाइट गजलें सुनती हूँ जो समझ में आ जाए मेरी। और भोजपुरी का तो ऐसा है कि पहले समझ में कम आता था, पर आजकल मुझे नया शौक अब डेवलप हुआ है, मैं पुराने भोजपुरी गाने सुनती हूँ, जो लता जी ने, आशा जी ने ऐसे गाए हुए हैं, फिल्मों में गाए हुए हैं, वो मुझे बहुत पसंद है।
0: ओके, ऑलराइट। तो दोस्तों ठीक है, बताया संध्या जी ने कि उनको गजलें भी कुछ लेवल तक पसंद हैं। जाहिर सी बात है, सुनते हैं मजा आता है, कुछ टेंशन रिलीफ होती है या कुछ टेंशन हो जाती है, गजलों को सुनकर टेंशन भी हो जाती है।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है थोड़ा हैवी हो जाता है,
0: थोड़ा हैवी हो जाता है, हर समय दुखी दुखी रहना भी उचित नहीं है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वैसी गजलें भी हैं जो कुछ अलग तरीके के भावनाओं को व्यक्त करती हैं, वो भी चीज मजेदार होती है, ऐसी बात नहीं है।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
0: चलिए, तो ये हुई संध्या जी के संगीत की बात। तैयार हैं दोस्तों, आइए ना इन गीतों का मजा लें जो संध्या जी ने इस प्रोग्राम के लिए हमारे लिए प्रिपेयर किए। लीजिए, पेश खिदमत है।

0: बहुत बहुत सुंदर गायकी, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटिफुल। चलिए, आपके म्यूजिक की बात हो गई, आपके शहर की बात हो गई, आपने कहीं और से आके उस शहर को अपनाया, उस शहर ने आपको अपनाया। अब थोड़ी सी आपकी शख्सियत के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। संध्या जी, जब आप छोटे से बच्चे थे
1: जी,
0: प्रयाग में थे शायद, जब वहीं पैदा हुए होंगे आई थिंक।
1: हाँ, मैं उधर उसके आसपास में ही हुई हूँ।
0: ओके ओके, कूल।
1: बेसिकली जी,
0: तब आप छोटे थे जब आप थोड़े से पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोटे छोटे स्कूलों में जाना शुरू हुआ, तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? आपके मन में क्या विचार थे, क्या सपने थे?
1: मुझे लगता है मैं शुरू से आर्ट्स के तरफ, मतलब डांस और म्यूजिक के तरफ बहुत इनिशियल, मतलब मैं शायद लोअर केजी अपर केजी में थी तब मैं परफॉर्मेंस करती थी स्कूल में स्टेज पर।
0: ओके।
1: तो मेरा बहुत इंक्लिनेशन शुरू से था, बट तब सोचा नहीं था क्या करना है। धीरे धीरे जब समझ आई, फिर मेरा डांस से थोड़ा म्यूजिक के तरफ ज्यादा हो गया, गाने लगी मैं स्कूल में। तो फिर तभी मुझे लगता था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूंगी, अच्छा लगता था मुझे। तो वही सोचते बड़ी हुई। फिर होता है ना, आप छोटे शहर से होते हो तो आप सोचते बहुत कुछ हो, लेकिन उतना आसान नहीं होता है। हमारे टाइम में तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं हुआ करता था, इतना इजीली एक्सेसिबल चीजें नहीं थी। तो मेन तो मुझे हमेशा ऐसे ही रहा कि मैं सिंगिंग करूं, मतलब किसी भी फॉर्म में। आप स्टेज पे कर सकते हो लाइव शोज, या रेडियो पे, या फिर आप प्लेबैक सिंगिंग। इनफैक्ट एक टाइम पे आके मुझे लगा कि मैं आरजे के लिए ट्राई करती हूँ। मतलब मैं लिटरली हमारे शहर में नया एफएम जब लॉन्च हुआ ना, तो मुझे बहुत मन था कि मैं जाके इंटरव्यू देके आऊँ, मुझे आरजे बनने का बड़ा था। तो मुझे हमेशा ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रहा है, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, या फिर आर्ट्स, ये म्यूजिक सिंगिंग ऐसा।
0: नितिन भैया, एक कंपटीशन आ गया, ये भी आरजे बनना चाहते हैं, मर गए। अरे यार संध्या जी, आप गाना गाओ, अच्छा है ना, अच्छा गा रहे हो, क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो?
1: नहीं नहीं, अब तो मैं सिर्फ गा ही रही हूँ अभी तो।
0: नाइस। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा पर्सनली मानना है, मैं सभी दोस्तों को भी बोलना चाहूंगा, हर आवाज अच्छी होती है, ऊपर वाले ने बनाई है, प्रकृति ने दी है, हमें बस अपनी आवाज का टेक्सचर पहचानने की जरूरत है, उसका सिग्नेचर पहचानने की जरूरत है, और उसको हम इस्तेमाल करें, यही ऊपर वाले की मर्जी है। बहुत खूब, चलिए, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हुए आपके गाए हुए ये गीत हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, बहुत मजा आएगा।

0: बहुत खूब, बहुत खूब है। संध्या जी, एक थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल पूछता हूं आपसे। आपके पास जितनी भी यू नो मटेरियलिस्टिक चीजें मौजूद हैं, हो सकता है घर हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, टेलीविजन हो, फोन हो, किचन में बहुत सारे रखे हुए अप्लायंसेस हो, यूटेंसिल्स हो, या और भी बहुत सारी चीजें, सोना चांदी गहना, वो बहुत कुछ हो सकता है, क्या आप उन सब चीजों के लिए भगवान से शुक्रिया अदा करती हैं? आर यू सेलिब्रेटिंग दोज थिंग्स विच आर देयर विद यू? आपके पास जो कुछ भी है?
1: एब्सोल्युटली। मैं, मुझे लगता है मुझे बचपन से भी जो कुछ भी मिला है टिल डेट टुडे, आज तक भी और शायद आगे भी जो मिलने वाला है या जो भी मिलेगा, मैं मुझे हमेशा लगता है कि जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा, जो आपको नहीं मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि डेस्टिनी के हिसाब से ही चीजें आपकी लाइफ में होती है। तो भगवान का तो बिल्कुल दिल से हमेशा मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, मुझे बहुत कुछ मिला है मेरी लाइफ में, तो बस जो मिला है सब उनके वजह से ही मिला है।
0: बहुत बढ़िया। होता क्या है ना संध्या जी, कि हम किसी चीज के बारे में एस्पायर कर रहे होते हैं, यू नो फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मुझे मैकबुक चाहिए, तो जी मुझे, मैं मैकबुक के सपनों में इतना डूबा रहूं कि मुझे और कोई चीज पसंद ही ना आए, मेरा फोन मुझे पसंद ना आए, मेरा जो प्रेजेंट पीसी है वो उसमें हर एक बार में बार बार मुझे खोट नजर आए, तो मैं हर समय टेंशन में रहूं, बुरा गुस्सा करता रहूं और बुरा मानता रहूं और दुखी रहूं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे, मेरे पास कोई एक गाड़ी है, नहीं यार मुझे वो वाली गाड़ी मिलती तो ज्यादा अच्छा था।
1: हाँ, थोड़ा हम डिसअपॉइंट या पेसिमिस्टिक हो जाते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहे हैं। नहीं नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत सुपर सुपर पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं वर्स्ट में भी मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ कि नहीं, इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला होगा।
0: ऑलराइट, दैट इज सो ब्यूटीफुल। बस यही तो बात मैं जानना चाह रहा था। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आती और जाती रहेंगी, लेकिन अगर आप शुक्रगुजार हैं, अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं, तो ये चीजें और आपके पास आएंगी। चिंता मत करिए, बस शुक्रगुजार रहिए। क्या बात कह दी संध्या साहब आपने, थैंक यू सो मच। चलिए इसी बात पर ये प्यारे से गीत हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स हैव दीज टू नंबर्स, एंजॉय।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल।
1: थैंक यू।
0: फर्ज कीजिए संध्या जी कि आप 80 इयर्स की हो जाएं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि आप 100 साल के होने वाले हो, ये तो मुझे मालूम है।
1: थैंक यू।
0: बट मैं तो फिर भी 80 की बात कर रहा हूँ।
1: जी जी।
0: अगर आप 80 साल के हो जाएं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज या कोई बात आपके लिए क्या मायने रखेगी?
1: मेरे लिए मेरी फैमिली।
0: ओके।
1: जी, मैं कितने भी साल की हो जाऊं, मुझे ये चाहिए मेरी फैमिली मेरे आसपास होनी चाहिए।
0: आहा।
1: सब अच्छे, हेल्दी एंड हैप्पी। तो सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए वो वही फैमिली।
0: अगर बच्चे जो हैं आपको छोड़कर अमेरिका चले जाएं, जो कि आजकल का बहुत नॉर्मल ट्रेंड है, तो
1: उससे मुझे डर नहीं लगता। अगर बच्चे सक्सेसफुल है, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ऑब्वियसली दे शुड गो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: आपके पास रह के अच्छा नहीं कर पाएंगे?
1: नहीं, मेरे पास रह के भी अच्छा, अगर मेरे पास रह के अच्छा, वो तो सोने पर सुहागा है ना। अगर मेरे पास रह के अच्छा कर रहे हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं।
0: तो मत जाने दीजिए उनको, मत जाने दीजिए, अपने पास रखिए।
1: नहीं नहीं, मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगी, लेकिन अगर जाना पड़ा तो मैं रोकूंगी भी नहीं।
0: ओके, ऑलराइट, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, ये बात थोड़ी सेंसिटिव थी जो मैंने पूछ ली संध्या जी से, और संध्या जी ने अपने बारे में बता दिया। आप लोग अपने बारे में सोचिए, आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, और कुछ हमारे दोस्तों ने कहा भी है कि हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, एक अलग प्रोग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ तो संध्या जी की गायके का प्रोग्राम है। तो चलिए, ये गीत पेश करता हूं संध्या जी के, और फिर हम आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब। संध्या जी, आपके म्यूजिक के बारे में बात हुई, आपके बचपन के बारे में बात हुई, आपके सिटी के बारे में बात हुई, आपकी इच्छाओं के बारे में बात हुई, आपके स्वस्थ रहने के बारे में बात हुई। अब आप हम सबको कुछ मैसेज तो दे दीजिए, बस चलते चलते, क्योंकि वक्त की जो बंधन है ना, वो बड़ा ही बहुत ही बेदर्द होता है। I'm really sorry, लेकिन अब हमारे सभी सुनने वाले आपसे कुछ संदेश चाहते हैं, कुछ बात बताइए उनको।
1: जी मैं क्या बोलूं सबको, मैंने पिछले कुछ दिनों में सबको फॉलो किया है, आप ग्रुप पर भी देखा है, बाकी जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, और मैंने मतलब इतनी प्यारी आवाजें सुनी है अभी पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने जैसे लोगों से मिलना हो गया है। और बाकी बाकी सबके लिए मैं यही कहूंगी कि आप बस विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बट अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आप स्ट्रांग रहते हो, आप किसी भी सिचुएशन को फाइट करके आप वापस बाउंस ऑफ कर सकते हो, तो आई थिंक पॉजिटिव रहना इज अ मतलब बहुत जरूरी है, एप्टीट्यूड आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपकी लाइफ अच्छी ही होगी, मतलब आप अपने आसपास लोगों को खुश रख सकते हैं, किसी में कमियां भी हैं तो शायद आपको दिखेंगी नहीं, तो इट विल बी गुड ना, बेटर हो जाएगा।
0: एब्सोल्युटली,
1: तो मुझे यही लगता है कि बस आप ना बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल, भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए और गाते रहिए, अच्छे गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: ब्यूटिफुल। तो दोस्तों, संध्या जी का जो मैसेज है, चलते चलते उसके बारे में भी जरा विचार करते रहिएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, हम आपस में एक दूसरे को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं दोस्तों, तो इसलिए और एक दूसरे से सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो संध्या जी, थैंक यू सो वेरी मच, बिल्कुल बेबाक।
1: थैंक यू आप सभी को भी, थैंक यू समीर जी को, थैंक यू नितिन जी को, बहुत बड़ा वाला थैंक यू और अपर्णा जी को मेरा बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, अपर्णा जी की वजह से मैं यहाँ हूँ, तो उनको मैं मिलके थैंक यू बोलूंगी, बट अभी यहाँ से मैं जी दिल से बहुत थैंक यू।
0: नितिन जी तो हमारे सूत्रधार है देखिए, और अपर्णा जी जैसे लोग जो है वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमें किसी भी तरीके के मुसीबतों से बचाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, they are always standing there to protect us.
1: बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है।
0: ग्रेट। चलो संध्या जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, बच्चों को कहीं जाने मत दीजिएगा
1: जी जी,
0: अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू
1: जी, थैंक यू।

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी द्वारा रचित कहानियों पर आधारित गीतों की श्रृंखला कथा।

तो आज हम तुम्हें सुनाते हैं एक मजेदार कहानी। सुनोगे तो फिर बजाओ ताली।

0: अरे भाई, अपने दोनों हाथों से ताली बजाओ। ताली तो दो हाथ से ही बजती है। ऐसे देखा, अब बजी ना ताली। शाबाश। हाँ भाई, तो अब तुम्हें सुनाते हैं कहानी, भोलू की कहानी। एक था लड़का, नाम था भोलू। भोलू बकरियां चराने जंगल में जाता था। दोस्तों, एक बात थी, भोलू को मिठाई खाने का बहुत शौक था। इसलिए भोलू ये गीत अक्सर गाता रहता।
1: अगर कभी ऐसा हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, पेड़ों पर हो गरम जलेबी, लड्डू की बारिश हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, फूलों की जगह उगे मिठाई, रसगुल्ले या रस मलाई, पानी शरबत सा हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए।
0: अरे भाई, गीत गाकर भोलू ताली जरूर बजाता, ठीक वैसे ही जैसे तुमने अभी बजाई थी। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर जोर जोर से मारकर ताली बजाता। ऐसे। दोस्तों, जिस जंगल में भोलू बकरियां चराता, उसी जंगल में एक पुरानी गुफा थी। अच्छा भाई, गुफा जानते हो तुम? जंगल में पत्थरों को जोड़ जोड़ कर एक गोल गोल घर बना होता है, उसे गुफा कहते हैं। उस गुफा में तरह तरह की मिठाइयां थी। वहां रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, लड्डू और बर्फी तो भाई बहुत थी। क्यों, सुनकर ही आ गया मुंह में पानी। मगर गुफा का दरवाजा हमेशा बंद रहता। उस गुफा का दरवाजा खुल तो सकता था, लेकिन उसके लिए एक तरीका था। दरवाजे के सामने खड़े होकर तीन बार ताली बजानी पड़ती थी। कैसे? ऐसे। और फिर कहना पड़ता, खुल जा सिम सिम, और फिर गुफा का दरवाजा खुल जाता। और फिर पेट भरकर मिठाई खाकर बाहर भी निकला जा सकता था। तरीका बिल्कुल यही था, यानी पहले तीन बार बजानी पड़ती ताली। ऐसे। और फिर क्या कहना पड़ता? हाँ, फिर कहना पड़ता, खुल जा सिम सिम। है ना बिल्कुल आसान? जरा तुम भी करके देखो। हाँ हाँ, करो। शाबाश। पहले तीन बार बजानी पड़ती ताली। कैसे? एक, दो, तीन। हाँ भाई, अब कहो, कहो ना। खुल जा सिम सिम। हाँ तो दोस्तों, एक दिन की बात है, भोलू को उस गुफा के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, सुनते ही भोलू के मुंह में पानी आ गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस गुफा में मिठाइयां ही मिठाइयां थीं। जंगल में तो भोलू रोज जाता था, इसलिए उस गुफा तक पहुंचने में भोलू को कोई डर नहीं लगा। मगर रास्ते में अपना वही गीत गुनगुनाता रहा।
1: अगर कभी ऐसा हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, पेड़ों पर हो गरम जलेबी, लड्डू की बारिश हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, फूलों की जगह उगे मिठाई, रसगुल्ले या रस मलाई, पानी शरबत सा हो जाए, बड़ा मजा मुझको आ जाए, बड़ा मजा।